हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। सुबह के 7:32 हुए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा से प्रोग्राम रोशनी।

संस्कृत शब्द अपने आप में बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। जाने माने बौद्ध विद्वान भदंत आनंद कौशल्यायन ने संस्कृति के साथ सभ्यता शब्द को जोड़ते हुए अपने एक निबंध में लिखा है कि ये दोनों ही शब्द सरल हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत गंभीर हैं। वे लिखते हैं कि बहुत सारे लोग संस्कृति और सभ्यता शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें इनके सही अर्थों का पता नहीं होता। भदंत आनंद कौशल्यायन ने बहुत ही सरल शब्दों में संस्कृति का अर्थ बताया है। उनका कहना है कि संसार के सभी जीवधारियों के बीच मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसके पास सोचने समझने और विचार करने की शक्ति है। मनुष्य के इसी गुण के कारण वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए केवल भोजन करना और जीवन जीने के लिए दूसरे काम करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। वह समूह बनाकर रहता है, अपने साथ ही परिवार और समाज के लिए काम करता है। उसके पास सोचने विचारने की ताकत होती है, उसके अंदर समझदारी होती है। आपस में प्रेम के साथ रहना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, सहयोग की भावना रखना, नैतिकता और मर्यादा का पालन करना आदि गुण मनुष्य के अंदर ही होते हैं। संस्कृति का अर्थ सम्यक कृति होता है। भली भांति अच्छे तरीके से किए गए काम संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ सुधरी हुई स्थिति होता है। मनुष्य अन्य जीवधारियों से अलग यदि है तो वह संस्कृति के कारण है। यहाँ संस्कृति की बात केवल पहनावा, खान पान की आदतों और रहन सहन के तरीकों से जुड़ी हुई है, लेकिन इससे कहीं अधिक संस्कृति का पक्ष विचारों में दिखता है। मनुष्य ने भौतिक और सांसारिक सुखों के अनेक साधनों का विस्तार किया है। उसके लिए जीवन को सरल, सुखद और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे भौतिक साधन उपलब्ध हैं। गाड़ियाँ, बंगले, अच्छा खान पान, सुंदर कपड़े और सोने चांदी के गहने आभूषण आदि उपलब्ध हैं। लेकिन विचार करें कि यदि मनुष्य अपने विचारों से अच्छा नहीं है तो क्या ये सारी चीज़ें लाभकारी या सुंदर हो सकती हैं? अधिकतर लोगों के लिए इसका उत्तर नहीं में ही होगा। व्यक्ति के लिए ये भले ही उसको भौतिक सुख देने वाली हों, लेकिन समाज के लिए इनका कोई उपयोग या लाभ नहीं हो सकता। यह भौतिक संसाधन केवल समाज में विभेद की गहरी खाई पैदा करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, कहकर कबीरदास जिस करनी की बात कहते हैं उसमें संस्कृति का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के काम, उसके विचार और उसका व्यवहार उस व्यक्ति की संस्कृति को दिखाता है। व्यक्ति की संस्कृति के माध्यम से उसके समाज की संस्कृति दिखाई देती है। संस्कृति की श्रेष्ठता विचारों की श्रेष्ठता से बनती है। लोगों के लिए मन में अच्छे भाव रखना, सामंजस्य के साथ रहने की भावना रखना, मिलनसार और सरल स्वभाव का होना संस्कृति के विशेष गुणों को दिखाता है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राहुल मिश्रा से प्रोग्राम रोशनी आजी आकाशवाणी लेने शुंजी तंग दो छुचो दुनतास्कर्मा सुमचू सुपदुन छदुक कसतंग दिलिंग में टिक्रमिस्कुर गुन सनजात।

0: Dak zin shirayin tat banang zin tikrim sanadza, tsnga zi Akashvani lene shun jiktang, tsnga to chuzo gyat chadu kazata Akashvani Delhi ne sngula samachar prabhat yung destine morning news sanadza.
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
6: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
6: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख

0: दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक वैल्यूअर में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम

0: 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
4: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
2: Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions made by the Monetary Policy Committee at 10 a.m. in Mumbai. The six-member MPC started its three-day deliberations on Wednesday. In April, the Reserve Bank had kept its key policy rate unchanged. Here is more from our correspondent.
5: The government has set consumer price index-based inflation target at 4% with upper tolerance of 6% and a lower tolerance level of 2% for the central bank. The CPI rose slightly to 3.48% in April, mainly due to higher prices of gold and silver jewelry, as well as some kitchen items. As the CPI is within the tolerance level, economists are expecting that the key interest rate will be kept unchanged at 5.25%. It also says that the central bank will adopt a cautious approach in view of West Asia conflict posing challenges for the inflation as well as economic growth. Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Mumbai.
2: Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the passing of Dr. Kashyap. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training has informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on the 10th of this month for a further period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training has informed that the tenure of Parameswaram Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The NDA alliance in Andhra Pradesh has decided to allot three of the four vacant Rajya Sabha seats to the Telugu Desam Party TDP and one seat to the Janasena Party. The decision was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu after a meeting of NDA alliance partners held at its camp office in Amaravati.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

फिल्म लु टिक्रिमिना कसता हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म लु किशोर कुमार ने सनाजात आनंद बख्शी लो यंग श्रीकन आर डी बर्मन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialties. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
1: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect natural and the planet Earth.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का एक अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं।
2: प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक

0: भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। श्री पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। श्री पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र और लोकतंत्र है और रूस उसके साथ संबंधों का विस्तार करना जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है।
2: दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। साथ ही AI और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थानों में सैन्य प्रशिक्षकों के आदान प्रदान सहित नई प्रगति का स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने हरित विकास पर भारत ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल सहित भारत ब्रिटेन जलवायु साझेदारी के महत्व को भी स्वीकार किया। यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लिवरपूल विश्वविद्यालय को बंगलुरु परिसर खोलने के लिए स्वीकृति पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किंग्स कॉलेज लंदन और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप इसे सुन रहे हैं, 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आर्षिरेखा क्रिस्टल वॉइस। और फिलहाल ये वक्त है दिल का मेल बॉक्स का, यानी अपने दिल के मेल बॉक्स में भेज दीजिए वो गीत लिखकर जो आप सुनना चाहते हैं। कोशिश रहेगी आज किसी न किसी का गीत तो जरूर ऑन एयर हो ही जाए बढ़िया से, और सबका ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे की पसंद सुनना भी तो मजेदार लगता है ना। तो सुनकर तो देखिए अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9868686853, यानी 9868686853, और ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या का मतलब पता है ना, एक ही चीज करिए काफी है, और एक ही बार करिए काफी है, एक ही मैसेज भेजेंगे तो चलेगा। मैं आपका नाम जरूर कोशिश करूंगी शामिल हो ही जाए, और 10 बार भेजेंगे ना तो फिर मैं आपका नाम शामिल नहीं करूंगी, ये भी याद रखिएगा। कोशिश करिए सिर्फ एक मैसेज भेजें। अब मैं कुछ मैसेजेस हमें पहुंच चुके हैं उन्हें शामिल कर लेती हूं, और फिर आज का पहला गीत इस सफर का जरूर सुनाऊंगी। रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हमें उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने मैसेज लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने मजनू का टीला से, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेजा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का मैसेज मिला है, और हमें लिखा है किसने, श्रीपाल गोयल ने हरियाणा से बहादुरगढ़ से मैसेज, और इसके साथ साथ गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामी, वामिका और वाणी थांदी ने हमें लिखा है नवाशहर पंजाब से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती अरहान, अहमद सुफिया नवाब पल्लीमारान से हमें लिख रहे हैं, और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना ने सनावद मध्य प्रदेश से लिखा है। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप ने हमें मैसेज भेजा। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजानिया ने हमें लिखा है सिरसा हरियाणा से। गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम का मैसेज, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फुरदीन, सुहान अरजान, अवान और पूरे परिवार ने हमें मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से लिखा है। धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज, और हमें लिखा है उत्तम नगर होली चौक से जयराम कोरवाल, अमन कोरवाल, दीपांशु कोरवाल ने, और बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी आराध्या ने, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामणि शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने का ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से मैसेज, और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज। हमें लिखा है भूषण खेरा ने फजिल का पंजाब से, विशाल खेरा और विष्णु के साथ साथ में लाडे खेरा और शालानी खेरा और भी तिवांशी खेरा का, वाणी खेरा के साथ मैसेज हमें मिला है। थोड़ा सा क्लियर अगर आप नामों को लिखेंगे और फॉन्ट थोड़ा बड़ा लिख करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा पढ़ना। सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर का मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग के साथ। अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से हमें मैसेज लिखा है, और हमारे पास ये मैसेज मृदुल राज शर्मा का सीताराम बाजार से, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का मैसेज अलीगढ़ से हमें मिला है, और मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका का मैसेज श्रीगंगानगर राजस्थान से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती अंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें मध्य प्रदेश से मिला है, और हमें लिखा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने शेरवानी स्कूल गंज रणवाड़ा से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी वर्मा का मैसेज हमें मिला है जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से, और ये मैसेज है काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का। भगवती पुल प्रहलादपुर से हमें लिख रही हैं,
राजश्री नासिक महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। हेमा का गुरुग्राम से मैसेज, लेकिन फिलहाल तो एक गीत सुना देती हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं इस सफर को, और ये गीत किसकी पसंद है? कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना की पसंद। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत। आशा जी और रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत गीत तीसरी मन

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

हाँ जी, कैसे हैं? इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। 10:45:46 हो चुके हैं। आप आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा है, लेकिन क्या करूँ कि वक्त बहुत कम होता है ना इस सफर में, तो जितने मैसेजेस को शामिल कर पाती हूँ करती जरूर हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ बिना वक्त गवाए। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मैसेज हमें मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और हमें लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से, एसके खन्ना ने विकासपुरी से, इंदिरा नगर भवपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज। और हमें लिखा है कि गीत सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। गौरी शंकर ने नांगलोई से हमें लिखा है, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से मिला है। और राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार ग्राम फ्रांसी हिसार, जिला हिसार से लिख रहे हैं। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया का मैसेज हमें मिला है गांव चाहौलदा बागपत से। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव हमें देवेंद्र भूषण संस्कृति पौरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से लिख रहे हैं। और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मेघा का मैसेज हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मिला है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशोरिधान खुराना का मैसेज। और इसके अलावा खतौली शहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रद्युम्न वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, दिनेश चौहान ने रामदेवरा से, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने। शिवकन्ना विकासपुरी से हमें लिख रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। सतप्रकाश सनोथिया ने हमें रोहिणी से लिखा, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फायरा, फारिया और ताहिरा का मैसेज। और हमारे पास ये मैसेज है कैलाश चंद का महिंद्रा पार्क से। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल का मैसेज। और कुछ बात तो है गोल्ड में। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं गोल्ड में और कुछ बात तो है, ये बात अपने आप में कुछ खास है। गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज किया है। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा ने पटियाला रोड गंजरुनवाना उत्तर प्रदेश से मैसेज लिखा है। और जय हिंद कैप्टन ईश्वर चंद शर्मा हमें, कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा हमें द्वारका नई दिल्ली से लिख रहे हैं। और इसके अलावा आप देश सेवा में लगे हैं और हम भी तो एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं, बस हमारा अंदाज थोड़ा अलग है, आपका अंदाज अलग है और अपने अपने अंदाज में हम इसी तरह से जुड़े रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है जल्दी से ये भी बता दूं। ये गीत सुनना चाहा है अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से। और ये गीत सच कहूं तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मौका मिल रहा है तो बजा देती हूं। अनीता जी, ये रहा आपकी पसंद का गीत। लता जी और महेंद्र कपूर साहब।

जी हाँ, हमें भी एतबार है कि आपको एफएम गोल्ड से बहुत प्यार है, तो चलिए आपके नामों को शामिल कर लेते हैं। दातार सिंह शेखावत राजस्थान से, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत के साथ हमें मैसेज कर रहे हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनमोल खान का गंज डुंडवाना से मैसेज, और हमें लिखा है भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा ने ये मैसेज, जगदीश कुमार राहुल रितिका का नांगलोई से, और ये मैसेज वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का, और विशाल गवली सोनाली समर्पण भक्ति का मैसेज नाशिक डिंडोरी से, सागर कटक ऋषिकेश से हमें लिख रहे हैं, ऊषा वसानी संतोष वसानी तिरुपति नगर नांदूरा से, और ये मैसेज हमें लिखा है प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा ने जनकपुरी से, भगवती ने पुल प्रहलादपुर से, राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पारुल आद्विक समयपुर बादली से अतर सिंह के साथ हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है किसने महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रगेश प्रतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज, और टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर सिंह अमन डॉक्टर अमनदीप का हमें मैसेज, चंडीगढ़ मोहाली से मिला, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज बेटा बजाज का मैसेज, और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल ठाकुर का। और ये जो आप करते हैं ना, काफी सारे लोग कि बार बार कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से अलग अलग मेल्स करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, सिर्फ एक ही मेल करिए और सही नाम के साथ करिए, वही काफी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं और आप हैं कि बस शैतानी पर रहते हैं हमेशा, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप ही के मेल्स बार बार हमें अलग अलग नामों से मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती का हमें मैसेज मिला, कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी के साथ, और हमें लिखा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ से, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी ने पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचाया है, हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि नोखिलाल वर्मा का दंतगेरी दतरेंगी भाटापारा से मैसेज, और हमारे पास मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और सादिया का मैसेज, गिरी डी झारखंड से और नसरीन अंसारी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ राशिद हुसैन का जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज है, पंजाब से गांव नथाना से हमें लिखा है हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता ने, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू मधु का टिल्लू नायक और मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ठाना से मैसेज है, और सुखराम सिंह मरावी का सूरजपुर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से मैसेज, ये मैसेज हमें लिखा है गांव फ्रांसी हिसार से, फिर से देखिए रिपीट मैसेज, ये बात हमें थोड़ी सी बुरी लगती है, जगदीश जोहरी प्रवीण सोनी पूजा पायल का गुजरात गांधीग्राम से मैसेज है, पश्चिम बिहार दिल्ली से हमें लिखा है नीरज अग्रवाल सचिन और डी के अलवी ने, और जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस का मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से, राजपाल सोनू सुरेश काजल मानवी लक्ष्य मोहिनी मलवीर और मुकेश कश्यप शीतल कश्यप का मैसेज दूलापुर उत्तर प्रदेश से, और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बार बार हमें मिल रहे हैं। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का मैसेज है, अब देखिए मैं बार बार स्क्रॉल करती रहती हूँ और पता चलता है कि सेम मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें पढ़ने में। मास्टर खिलू परवेज बेगम इमरान अनाज नवाजिश शेख दानिश अमन और राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैसेज है, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर अंसारी मेरा जहां आजाद लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा और पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का का मैसेज हमें मिला है। भाई पापा जी तो वो आपके हैं, तो इसलिए पापा जी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ नाम लिख दें काफी है, ऐसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि नाम क्या है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है ये भी देख लेते हैं। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार ने, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने, और डांगरी से बाबूराम जयपाल ने, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने, तो ये रहा आप सभी की पसंद का गीत फिल्म हमजोली से।

ज्यादा नहीं बचा है वक्त, तो जल्दी से इसी गीत के साथ आपसे इस सफर से लेती हूँ इजाजत, लेकिन वापस मिलूंगी लेकर तस्वीर 11:10 पर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस दिल का मेल बॉक्स से लेती है इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी

प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं और 11:11:18 हो चुके हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये सफर है तस्वीर का। भाई कहते हैं घूमना फिरना सचमुच इतना आसान नहीं होता, ये वही लोग कर सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा ऐसी चीजों में रहता है, जो कुछ नया जानना चाहते हैं, जो नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जिन्हें अच्छा लगता है कि बस घर में रहें, किसी से बात ना करें। वो लोग घूमने फिरने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और अगर आप अपने आप को एक बार बाहर निकाल कर कहीं चले ही जाते हैं, घूम ही आते हैं, तो सच मानिएगा, यकीन मानिएगा कि आपका जो मूड है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा और सचमुच ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही। आप नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे और फिर आपका मन तो बिल्कुल नहीं करेगा कि आप घर के अंदर बैठे रहें। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपना बैग उठाकर निकल चलेंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे हर बार मैं अपना थैला उठा के निकल जाती हूँ कि भाई चलिए कहीं घूम आते हैं। और आज भी मैं चली हूँ फूलों की घाटी देखने, तो आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आ जाइए जल्दी से। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है फूलों की घाटी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर है, पृथ्वी की सबसे जादुई अजूबों में से एक है और ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी है और इस घाटी की खोज फ्रैंक एस स्मिथ ने 1931 में की थी। ये लगभग पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है और इसलिए यहाँ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फूलों की घाटी वनस्पति विज्ञानियों, फूल प्रेमियों और निश्चित रूप से ट्रैकर्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जिनके लिए किसी जगह पर पहुंचना सिर्फ एक बहाना होता है और वहां पहुंचकर शुरू हो जाती है उनकी ट्रैकिंग। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो आपके लिए जगह बहुत ही खास है। फूलों की घाटी में लगभग 650 तरह की विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां होती है वो पाई जाती है और यहाँ कुछ बेहद दुर्लभ पौधे भी मिलते हैं, जैसे की ब्लू पॉपी, लेडी स्लीपर आर्किड और ब्रह्म कमल जैसे फूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये घाटी भोजपत्रों के घने जंगलों से घिरी हुई है और पुष्पावती नदी के एक किनारे पर स्थित है। तो अगर आप भी इस घाटी का आनंद लेना चाहते हैं, इस फूलों की घाटी में घूमना चाहते हैं, तो ये मौसम बहुत ही खूबसूरत है यहाँ जाने के लिए। एक और वजह भी है यहाँ क्यों जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जाने का जो मौका है वो इस वक्त खुला है, आप आसानी से यहाँ पर पहुंच जाइए और इस जगह को देखिए। इस जगह के बारे में क्या खास है, क्यों यहाँ जाएं, आपके सवाल जरूर हम सभी सॉल्व करेंगे और मैं आपको

कुछ बताऊंगी कि ये जगह क्यों इतनी खूबसूरत है, इतनी खास है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा 11:13 और ये हुए पूरे 14 मिनट। तो भाई चलिए तस्वीर का सफर शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और फूलों की घाटी की सैर हम यूं ही करते चलेंगे। तो लीजिए ये रहा खूबसूरत गीत अनमोल सजना फिल्म से।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

बजकर 21 मिनट 30 सेकेंड हो चुके हैं और हम चले हैं फूलों की घाटी की सैर करने। और उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल चुका है। यहाँ आपको 600 से ज्यादा तरह के फूल और दुर्लभ जानवर देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए खुला है और समुद्र तल से ये लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये घाटी सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ ही ये एक जादुई दुनिया में बदल जाती है। ये घाटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसे अगर खूबसूरती की मिसाल कहा जाए तो ये सचमुच कोई गलत बात नहीं है और जिसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। अगर आप इस साल फूलों की घाटी को करीब से देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसके बारे में जानने को, जिसे फ्लावर ऑफ वैली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। और ये नेशनल पार्क 1887 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस घाटी को सबसे पहले एक ब्रिटिश ट्रैकर फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में खोजा था। दरअसल वो अपने दो साथियों के साथ ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटककर यहां पहुंच गए थे और रंग बिरंगे फूलों से ढकी इस घाटी की खूबसूरती को देखकर वो हैरान रह गए और इसलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी रखा गया। घाटी की खासियत जैसा कि मैंने कहा, 600 से ज्यादा प्रजातियों के फूल हैं जिनमें ऑर्किड्स, पॉपी, प्रिमुलस, मेरीगोल्ड और एनिमोस जैसे बहुत सारे फूल शामिल हैं। सर्दियों में ये घाटी बर्फ से ढकी रहती है लेकिन मई से सितंबर के बीच ये पूरी घाटी रंग बिरंगे फूलों से ढक जाती है। और इसके अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कस्तूरी मृग, ग्रे लंगूर, लाइम बटरफ्लाई, हिमालयी वीजल्स और हिमालयी भालू और स्नो लैपर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो भाई आपको हो सकता है कि इनके भी दर्शन हो जाए। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और वो कैसे करना है जान लीजिए। पवित्र हेमकुंड साहिब के पास होने की वजह से सभी यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। यहाँ जाने के लिए घाटी में एंट्री के लिए उत्तराखंड वन विभाग से ई परमिट लेना होता है और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप घांगरिया में बने फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ट्रैक की एक शाम पहले ही ऑफलाइन परमिट ले लें ताकि खराब मौसम या किसी देरी की वजह से डेट्स लॉक ना हो। और इसे उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। ये परमिट 3 दिनों तक वैलिड होता है और भारतीय नागरिकों के लिए 150 के करीब और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपए के करीब इसकी फीस रहती है। आप खुद गोविंद घाट और घांगरिया में होम स्टेज या गाइड बुकिंग करके खुद भी यहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग भरोसेमंद ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए ही गाइडेड पैकेज चुनते हैं और अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब 10 से 12 हजार रुपए के बीच हर व्यक्ति पर आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें बेस कैंप में रहना, खाना, गाइड और परमिट सभी कुछ शामिल रहता है। घाटी जो है वो 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए इस बार खुली रहेगी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस बीच आप यहां जाने के लिए सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और अगर आपका प्लान बने तो मुझे भी बता दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे फूलों की इस घाटी में घूमने पर। ये है रफी साहब की आवाज में एक और प्यारे से गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, ये लीजिए। फिलहाल इसे एंजॉय करिए और उसके बाद इस घाटी में और भी लंबी सैर तक निकलेंगे हम।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

11:33 हो चुके हैं और हम सैर कर रहे हैं फूलों की घाटी की। अगर आप फूलों की घाटी देखना चाहते हैं तो अभी से आप ट्रैक की योजना बना सकते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, यहाँ ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। मई में जब बर्फ पिघलती है तो फूलों की घाटी घूमने के लिए खुल जाती है। मई के महीने में आपको बर्फ तो खूब दिखेगी लेकिन फूल बहुत कम खिले हुए नजर आते हैं। मई में घूमने का एक बड़ा फायदा यह है कि बारिश कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बारिश का मौसम जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाता है। जून जुलाई की बात करूं तो इन महीनों में फूलों की घाटी में झरने और खूबसूरत ग्लेशियर्स देखने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं। और इस महीने में घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बारिश बहुत कम होती है। अगर आप अगस्त और सितंबर में जाएं तो मई में बर्फ पिघलने लगती है और नए पौधे अंकुरित होकर अगस्त तक बढ़ते रहते हैं। मध्य अगस्त की बात करूं यानी अगस्त के बीचों बीच मिड अगस्त की, तो यहां बहुत सारे फूल खिले हुए देख सकते हैं आप। और सबसे ज्यादा फूल देखने का सबसे अच्छा समय है अगस्त और सितंबर। ये कहा जा सकता है कि फूलों की घाटी घूमने या यहां पर मजे या आनंद लेने के लिए फूलों का ये सबसे अच्छा और आखिरी महीना है। लेकिन पौधों और फूल सूखने लगते हैं इसके बाद और अगले मौसम के लिए अपने बीज धरती पर गिरा देते हैं। और अगर बात करूं तो यहाँ पर्यटकों को फूलों की घाटी में ठहरने का कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्क के अंदर कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस अद्भुत घाटी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किसी निजी लॉज या होटल में ठहरना होगा यहाँ से आने के बाद। और मैं यहाँ पहुँचने की बात करूं तो सड़क मार्ग से आप चोपटा या बाकी मार्गों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। चोपटा उखीमठ रास्ते रोड का जो रास्ता है उसके उसमें ही पड़ता है ये रास्ते में। और उत्तराखंड के सभी प्रमुख रास्तों से बस और टैक्सी आसानी से बुक की जा सकती हैं। फूलों की घाटी गोविंद घाट से अच्छी तरह से जुड़ी है और यहाँ से फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती है। गोविंद घाट उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों से परिवहन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और ऋषिकेश या हरिद्वार से कार, बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। रेल से अगर आप जाएं बाय ट्रेन तो फूलों की घाटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहां से आपको गोविंद घाट तक जाने के लिए कार या बस का इंतजाम करना होगा। और फूलों की घाटी गोविंद घाट से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश शहर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों से रेल और सड़क से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाय एयर यहां पहुंचने की तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो यहां सबसे नजदीकी है, लेकिन सड़क मार्ग सिर्फ गोविंद घाट तक ही जुड़ा हुआ है। वहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। गोविंद घाट जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से लेकर 292 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और मोटर जो योग्य जो सड़कें हैं वो यहाँ पर हैं जो अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हवाई अड्डा यहाँ से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दिल्ली से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आप दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो जॉली ग्रांट के लिए आप प्लेन ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात यहाँ पहुँचने की। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जानने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद बताऊँगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

जी हाँ, हम सभी का कुछ ऐसा ही नाता है आकाशवाणी के साथ, क्योंकि हम दिन रात इसके साथ जुड़े रहते हैं और इतनी सारी चीजें हमें जानने के लिए मिलती हैं। आप देखिए ना, जैसे मैं आपको ले चली हूँ फूलों की घाटी और आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर और घूमने के लिए क्या क्या है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो तो आप देख ही लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा

अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग तरह के खिले हुए घाटी के अंदर फूल और उनके रंग देखकर सचमुच आपका मन बहल जाएगा और फिर आप कहेंगे कि भाई मैं तो यहीं पर रह जाऊं, कहीं ना जाऊं। इसके अलावा आप चाहें तो घाघरिया जा सकते हैं, ये घाटी का बेस कैंप है। फूलों की घाटी जाने के लिए आपको यहीं पर रुकना होगा और यहाँ के चारों ओर के नजारे और हरियाली आपका दिल जीत लेगी। हेमकुंड साहिब भी है, यहाँ सिखों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थल है ये, जो कि बहुत ही देखने लायक खूबसूरत तो है ही, आपको एक अलग ही धार्मिक वाइब भी देता है। यहाँ का बर्फीला झील जो है वो भी एक अपने आप में अनोखा अनुभव है। अगर आप यहाँ पर जाएं, गुरुद्वारा तो है ही जिसके अंदर आप दर्शन करने जा सकते हैं। पुष्पावती नदी का भी आप नजारा ले सकते हैं। अगर ये नदी सीधे फूलों की घाटी के बीच से होकर गुजरती है तो फिर सोचिए कि कैसा मजा आता होगा। सचमुच ये वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगी और उसका जो पानी है वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको सचमुच नजारे का आनंद लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पर आराम से इस जगह को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और आसपास के नजारे देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं तो घाटी के रास्ते में बद्रीनाथ मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर और इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा माणा गांव, जो भारत का पहला गांव माना जाता है, उसे भी आप देख सकते हैं, तो फिर यहां पर भी आप जरूर जाइएगा। और भी बहुत सी चीजें हैं यहां पर देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये खूबसूरत गीत लता जी और रफी साहब की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

दोस्तों, फूलों की घाटी के ट्रैक और बेस कैंप यानी जैसे कि गोविंद घाट और जोशी मठ में बहुत ज्यादा व्यावसायिक दुकानें नहीं है। यहाँ खास तौर से हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और ट्रैकिंग गियर मिल सकते हैं आपको। आप अपनी इस खूबसूरत यात्रा के दौरान कुछ चीजें खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। स्थानीय जड़ी बूटियां और मसाले यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ के पहाड़ों में उगाई जाने वाली शुद्ध जड़ी बूटियां, शहद और मसाले जैसे जाखिया और बहुत से काला जीरा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद कर ला सकते हैं। आपका घर का बना हुआ अचार भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और रोडोडेंड्रोन यानी बुरांश का जूस या जैम और स्थानीय शहद आप खरीद सकते हैं। और ये चीजें एकदम शुद्ध होती हैं क्योंकि यहीं पर उगाई जाती हैं, यहीं पर बनाई जाती हैं। और उन्हीं वस्त्रों की अगर बात करें तो रास्ते में जोशीमठ या घांगरिया जैसे पड़ावों पर स्थानीय बुनकरों द्वारा बुने गए स्वेटर, शॉल, मफलर और टोपी भी आप खरीद सकते हैं। हस्तशिल्प की बात करूं तो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले लकड़ी के शोपीस, पेंटिंग्स और बहुत सी ऐसी यादगार चीजों को आप यहाँ पर अपने घर लेकर आ सकते हैं ताकि आपकी यात्रा आपको हमेशा याद रहे। वोकल फॉर लोकल बनिए, वहाँ के लोकल लोगों से कुछ ना कुछ जरूर खरीद लीजिए क्योंकि यही उनकी आजीविका का एक खास जरिया होता है। अगर आप ट्रैकिंग के दौरान कोई जरूरी सामान भूल गए हैं तो बेस कैंप से ट्रैकिंग पोल, रेनकोट, बैग और वाटरप्रूफ दस्ताने खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी यात्रा के लिए आपके काम आएंगे यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कचरा बिल्कुल मत फैलाइएगा, प्लास्टिक की चीजों से बचिएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको याद दिला दूं कि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे गंदा बिल्कुल आपको नहीं करना है। और जोशीमठ सबसे अच्छी जगह है जहां से आप जरूरी सामान या फिर कोई भी चीज ऐसी खरीद सकते हैं जो आपको यहां पर जरूरत हो। और अगर मैं बात करूं तो फूलों की घाटी का जो मेन ट्रैक है नेशनल पार्क के अंदर, कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। यहां जाने से पहले आप बेस कैंप या नजदीकी गांव जैसे कि गोविंद घाट और घांगरिया में पहाड़ी और पारंपरिक गढ़वाली व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं जैसे फाणू, कंडेली का साग, गहत की दाल और स्थानीय मंडुआ या झंगोरा की रोटी, आप इसे यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। गर्म आलू के गुटके और कचौड़ी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मीठे की बात करें तो झंगोरा की खीर एक पहाड़ी मिष्ठान है, इसका भी आप टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप 10-15 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पैदल सफर करना पड़ता है, इसलिए अपने बैग में एनर्जी के लिए कुछ स्नैक्स को आपको जरूर रख लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट अगर आपके पास हो तो इन्हें आप रख लीजिएगा। ORS रख सकते हैं आप अपने साथ और ग्लूकोज पाउडर को आप हो सके तो जरूर रख लीजिएगा। पानी में मिलाकर आप पियेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है।

और यहाँ पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों को आप देखकर जब आपका मन मुग्ध हो जाएगा तो फिर सचमुच आप मुझे याद जरूर करेंगे कि भाई ऐसी इतनी खूबसूरत जगह हमें बताई और हम यहाँ पहुंच गए। वैसे आपको बताऊं कि पौराणिक महत्व भी है इस जगह का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहाँ से हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने आए थे। तो आप समझ सकते हैं आपकी कितनी खास है ये जगह। और अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के फूल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप देख पाएंगे। कौथिक या मेले की बात करूं तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में लगने वाले पारंपरिक मेलों को कौथिक कहा जाता है और उनमें स्थानीय संस्कृति और संगीत और पारंपरिक उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाते हैं। चैत्र महीने की शुरुआत में यानी मार्च के बीचों बीच सुबह यहाँ पर घरों की देहली पर फूल और चावल चढ़ाए जाते हैं, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मेला जो है ये फूल मेला, संक्रांति और ये सभी त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। फूल दही कहा जाता है इसे, फूल संस्कृति संक्रांति भी कहते हैं इसे, और ये उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध फूलों का त्योहार है। अगर आप इस दौरान यहाँ जाएं तो इस त्योहार का आनंद जरूर लीजिएगा। वैसे बहुत से मेले भी लगते हैं यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं के बदलाव के समय पर, यहाँ आप उन मेलों का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल तो आप किस इस गीत का आनंद लीजिए जो आप तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। ये रहा आपके लिए लता जी और रफी साहब की आवाज़।

0: तो वहीं अगर आपको वक्त मिले तो पहुंच जाइए फूलों की घाटी, ट्रैकिंग कीजिए। 3-4 दिन का समय आपको यहां पर बहुत मजेदार ट्रैकिंग का मौका मिलेगा। गोविंद घाट से घाघरिया तक आप जाएंगे, ये भी एक ट्रैक है जहां पर चढ़ाई है, फिर घाघरिया से फूलों की घाटी और फिर घाघरिया वापसी, और यहां से फिर आपको थोड़ा सा चलना है घाघरिया से हेमकुंड साहिब, और चौथे दिन घाघरिया से गोविंद घाट तक की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत मजेदार यात्रा होने वाली है, तो जब भी आपको मौका मिले पहुंच जाइए यहां फूलों की घाटी की सैर करने के लिए। लेकिन अब तो वक्त नहीं बचा है, मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूं आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल वक्त है हिंदी अंग्रेजी समाचारों का। आज के लिए मेरा और आपका सफर इतना ही।
1: नक्संगे चरंगे एफएम गोल्ड दिल्ली ग्रीम गुन सनाजाज मीडियम वेव किलोहर्ट्ज 6 तोंगापचुंगाक्सुम यंग नामीटर सिंगिप क्या क्या चुके अभी तंग शुजुरगु यंग एफएम मेगा हार्ट्ज क्या नाचिक तंग शुजुरचिकी का नजे आकाशवाणी लेनी जुन्चिक तंगिन ये मैं चुतो चुंगे छादुक कसता चुतो चुंगे फिर सुखपा फिल्मेलु रिक सनाजाज इन असमोल्ला दिल तो पागल है फिल्मेलु लता मंगेशकर तंग उदित नारायण ने सनाजाज लुरसुमकन अनंत बख्शी यंग लोयंग श्रीकन उत्तम सिंह।

दक्षिणी जरंगे दिल है तुम्हारा फिल्म मिलू आलका अग्नि कुमार सनु तंग उदित नारायण ने सनाचाच समीर लु आयांग श्रीकांत इन पिन नदीम श्रवण। फिल्म मिलु डिग्री में नांगा कसता कभी खुशी कभी गम फिल्म मिलु आलका अग्नि तंग सोनू निगम ने सनाचात लुरसुमकन अनिल पांडे यांग लोयांग श्रीकांत संदेश शांडिलिया।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।

0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
0: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
5: यार, क्या सबको नकली मिला? अब तुम भी नकली, तुम
6: कैसे हो सकता है?
5: आया था
6: राजा, नकली ही रहते सकता है,
5: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले। महाराज
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
7: महाराज की
8: जय!
7: महाराज की
8: जय!
7: महाराज की
8: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
9: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव

भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है, यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है, यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है, गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है, बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है, उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है, बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है, गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत

0: विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: दक्षिणी जरंगे एनसीईआरटी चिंतक दत्तकनी डिग्रीम उमंगे खाक चिक्स तोंग सुम के पसर जाते।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year, announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal. RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
1: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
4: Industry body ASSOCHAM has said the RBI's decision to keep the repo rate unchanged at 5.25% will strengthen growth and business sentiments. Secretary General ASSOCHAM Saurabh Sanyal said the decision reflects a balanced approach towards supporting economic growth while ensuring inflation remains within the target range. The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. World Environment Day is being celebrated across the globe today. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi has said initiatives like Ek Ped Ma Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that this day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stressed the need for greater awareness on environmental protection and expanding green cover across the country. The minister offered prayers at the Sri Venkateshwara Swami Temple in Tirumala and later planted a sapling under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign on the occasion of World Environment Day.
5: Prime Minister Narendra Modi has encouraged us to plant one tree in the name of our mother, Ek Ped Ma Ke Naam. It is truly a divine blessing for me that I could plant a tree in my mother's name in the Tirumala Balaji Hills.
4: Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. Prime Minister Narendra Modi has expressed happiness that the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary Surhatal in Balia, Uttar Pradesh has been designated as India's 100th Ramsar site. The Prime Minister has said India's digital infrastructure journey is gathering remarkable momentum. In a social media post, Mr. Modi informed that AirTrunk has announced plans to invest around 3 lakh crore rupees in India and develop 5 gigawatt of data center capacity. Benchmark domestic equity indices slipped into negative territory during afternoon trade. Today, the Sensex lost 86 points to 74,274, while the Nifty dropped

84 दशमलव 9 मीटर यानी 1053 किलो हर्ट्स और FM 101.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है लव आजकल फिल्म से, मोहित चौहान की आवाज़ में। गीतकार है इशात कमील और संगीतकार है प्रीतम।

चलिए अगला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, क्रिएचर फिल्म से गीत। गीतकार और संगीतकार है टोनी कक्कर।

लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म से गीत, उदित नारायण और आलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म से निराज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में। गीतकार थे इरशाद कमील और संगीतकार थे प्रीतम। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी लायर की आवाज़ों में।

फिल्म गीतों के अंत में फौजी भाई आप सुनते हैं केके की आवाज़ में बजरंगी भाईजान फिल्म से। गीतकार है कोसर मुनीर और संगीतकार है प्रीतम।

0: ngaje akashwani leni jun jik tain yime chu so chik tang skarma ngap chu chadu kasat akashwani delhi ne sngol la urdena na chul meeti news tang do pehar samachar sanazat
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में असासों के फायदों पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने जीडीपी से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्त इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल की उम्र तक के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सड़क, बिजली और सनाती शोबों के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे जिनकी मालियत 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर आज़म हजीरा जाएंगे और सहपहर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करने से पहले सनाती और बुनियादी ढांचे की जारी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। बाद में शाम को वज़ीर आज़म दमन का दौरा करेंगे जहाँ वो कौम के लिए हिफ्ज़ान सेहत और हवाबाजी के बड़े बुनियादी ढांचे समेत दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप के लिए अहमियत के हामिल बहरी प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है हमारे नामा निगार की रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और जदीद नमो अस्पताल की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे जिससे इलाकाई फजाई राब्तों को इस्तेहकाम हासिल होगा और मरकज के जेरे इंतजाम इस इलाके में हिफ्जान सेहत तक मजीद रसाई हासिल होगी। वो बुनियादी ढांचे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे जिसमें आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस भी शामिल है। समुद्री तरक्की के लिए अहम कदम के तौर पर वज़ीर आज़म मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप में बंदरगाह प्रोजेक्टों के लिए इजाफी तौर पर संग बुनियाद रखेंगे जिनकी लागत 885 करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्टों से काला पानी और कदमत जजीरों की तरक्की में इजाफा होगा। मुसाफिरों और बहरी जहाज़ों की साल भर की आमदोरफ्त बढ़ेगी। इसके अलावा माही परवरी नीस कश्तियों की मरम्मत की सहूलियात में इजाफा होगा। सूरत से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफर को काबिल तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के इको निज़ाम में सरमायाकारी की सबसे बड़ी तजवीज़ है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की सरमायाकारी से क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की पोजीशन को इस्तेहकाम हासिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके योम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए उनका काम काबिले सताइश है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में लंकामुरा सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए सरहदी हिफाजत का एक जाम खाका पेश किया है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर जनाब शाह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों के माहौलियाती ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2019 में CAPF अमले ने तकरीबन 4,40,00,000 पौधे लगाए थे। वजीर दाखिला ने सरहदी हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत त्रिपुरा مغربی بنگال اور بہار کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آبادی میں تبدیلی کی روک تھام کی پابند ہے. انہوں نے بتایا کہ سرحد پر پرانی باڑ کو ہٹا کر 119 کلومیٹر نئی باڑ کی تعمیر کے لیے رقم کی منظوری دے دی گئی ہے.
3: 2019 سے لے کر آج تک ہمارے سبھی سی اے پی ایف میں جوانوں نے لگ بھگ 6,40,00,000 وکسوں کو لگانے کا کام کیا. اس سال ہم 40,00,000 سے 60,00,000 وکس لگانے والے ہیں.

0: अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों और सरकारी तमस्सुकात में सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिले इतलाक होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमू अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाज़ा लगाया है, जबकि इससे पहले उसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फीन की कीमतों के अशारिये पर मबनी अफरात जर की शरह का निशाना अब 5.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरीना रुकावटों, बैनुल अक्वामी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया है। RBI ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौकों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदन नितिन नबीन ने तमिलनाडु में BJP के चीफ KN नामलाई की तरफ से दिए गए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में अन्नामलाई ने BJP के सदर को अपना इस्तीफा पेश किया था। 12वीं जमात के तलबा की तरफ से CBSE के नतायज के बाद की शिकायतों के अजाले के अमल के लिए 70,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 3,314 दरखास्तें नंबरों की तौसीक और दोबारा जांच के लिए 63,000 से ज्यादा दरखास्तें शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नेपाली वजीर खारजा नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तरफैन तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम से आवाम के राब्तों समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रयास पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का इफ्तिताह किया। जापान में 18 साल की उम्र तक के मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच काका मीगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में एहसासों के फायदों पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली ना करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले ये पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल तक की उम्र के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज़। headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Karnal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. We have a report from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new terminal building of Namo Airport and modern Namo Hospital in Daman today, strengthening the regional air connectivity and healthcare access for the Union Territory. He will also lay the foundation stone for several landmark infrastructure projects, including the iconic bridge, Daman Convention Centre and NIFT Campus. In a significant step for maritime development, Prime Minister will additionally lay the foundation stone for port projects worth 885 crore rupees for the Union Territory of Lakshadweep. These projects will develop multipurpose jetty on Kalpeni and Kadmat Islands, enabling year-round berthing for large passenger and cruise vessels while supporting the local fishermen with integrated fish handling and boat repair facilities. Aparna Khun, Akashwani News, Surat.
2: The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The ministry added that the exemption will apply to any interest or capital gains arising to foreign portfolio investors on or after 1st April in respect of investments in government securities. It said similar income tax exemption is also provided for the Bank for International Settlements for any interest or capital gains from its investments in government securities. The ministry said this will ensure stable, systematic inflow of durable, patient foreign capital and long-term investors such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 5% while the marginal standing facility rate and the bank rate continue at 5.5%.
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
2: The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downward to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. While inflation is expected to remain within the target range, rising fuel prices and higher input costs could exert upward pressure on prices in the coming months.
4: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
2: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% down during afternoon trade today. The Sensex lost 289 points to 74,071, while the Nifty dropped 100 points to 23,317 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading over 0.5% down, while small-cap 100 index fell 0.3% a short while ago. Union Home Minister Amit Shah today outlined a comprehensive border security vision while addressing border security force personnel at the Lankamura border outpost in Tripura. Emphasizing border security, the Home Minister said the government is determined to prevent illegal demographic changes along border areas of Tripura, West Bengal and Bihar. He informed that approval has been granted for the construction of 119 kilometers of new fencing to replace aging sections of the border fence. Mr. Shah also unveiled a smart border strategy aimed at integrating advanced technology with local civil administration to strengthen border management. A pilot project of the integrated model will be launched at 7 to 8 locations next year before wider implementation.
5: Our government is firmly committed to prevent illegal demographic changes in the border regions of Tripura, West Bengal and Bihar. To safeguard the demographic balance and strengthen border security, we have undertaken extensive border fencing measures in these areas.
2: A total of over 70,000 applications have been received through the CBSE post-result grievance redressal process from Class 12 students. This includes 7,314 applications for verification of marks and over 63,000 applications for re-evaluation. CBSE had opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers on Tuesday. Following the declaration of Class 12 results on the 13th of May, a section of students expressed dissatisfaction with marks awarded and questioned the accuracy of evaluation under the on-screen marking system OSM. The Ministry of Education initiated a review of the implementation and procurement aspects of the OSM system, including examination of vendor performance, contractual obligations and quality control mechanisms. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards to 65 eminent personalities for the year 2026 at the second civil investiture ceremony on the 23rd of this month. Earlier last month, the President had presented Padma Awards to 66 eminent personalities at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. This year, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri awards. The awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party's State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, will be on a 3-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. During the visit, Mr. Khanal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, the Foreign Ministry of Nepal said the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. The Union Minister also launched a series of environmental initiatives under the nationwide campaign Ek Ped Maa Ke Naam on the occasion. Speaking on the occasion,

0: 9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री SJYSHANKAR के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के

0: बढ़ावा के लिए। तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव किलोहर्ट्स 6.5 मियांना मीटर स्पैन नीप के आगे चुके अभी तंग शुजुर्गो यंग एफ एम मेगा हार्ट्स की अनाचिक तंग शुजुर ची का आज आकाशवाणी लेडी जुंजिक तंगिन निमे चुसो निज ना पे चादुक कसता चुसो निज तंग अप चुंगा सुखपा लुरिक सनजात स्कूल ला स्मला टुंडुबे सलकने इलुबो सनजात

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नक्संगे जरंगे छोंग थिलेस तंग थोपा गोने सल कने लुरिक सनजाच ngaje akashwani lene junjik tangin ngimi chu chu ngis tang skar mangap chunga cha tu kasata ladak sana nasul sana jat.

0: श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

0: आकाशवाणी केंद्र ले के कार्यक्रम हेलो फरमाई सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार सलाम अलैकुम राधे राधे।
0: जी कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप जी कैसे है वो आप?
1: अरे मसाला बहुत अच्छा हो बढ़िया हो, और खास करके आपसे मेरा बातचीत हो रहा है ना। जीवन का हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है।
0: जी
1: जीवन का हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कोई भी बीता हुआ दिन दोबारा नहीं आता है ना।
0: जरूर हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी अनूप जी आप वैसे करते क्या हो?
1: जी मैं ऐसे में ईमानदारी से कहूँ तो मैं साइन बोर्ड लिखता हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: साथ में पंडिताई भी कर लेता हूँ, पूजा पाठ।
0: अच्छा जी,
1: क्योंकि मैं तो ब्राह्मीण हूँ इसलिए पूजा पाठ भी कर लेता हूँ लिखने के साथ साथ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप साइनिंग बोर्ड का काम करते हो, तो आपको इस काम को करते हुए कितने साल हो गए अभी तक?
1: जी बहुत कुल मिला के 20 ईयर्स हो गया।
0: 20 साल का आपका अनुभव है अभी तक?
1: अनुभव
0: जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। वैसे आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई तो वो एक कंप्यूटराइज होते, इन चीजों से आपके काम पे कोई असर पड़ता है अभी?
1: जी जी जी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो तो एकदम क्या कहूँ, मतलब तुरंत दे सकते है
0: जी,
1: इसलिए अवेलेबिलिटी तो ज्यादा डिजिटलाइज का है ना। तो मैनुअल का जो ये है सिलसिला जो थोड़ा बहुत कम हो गया
0: जी,
1: तो इसलिए बहुत दिक्कत में हूँ। और कभी कभी पूजा पाठ करता हूँ, पंडिताई भी करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बैलेंसिंग आ जाता है।
0: जी जी, ये जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों के काम भी कम होते जा रहे हैं, ये तो हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है। नहीं जी?
1: प्रभाव पड़ रहा है
0: जी जी।
1: और बाकी ये जो टेक्निकल जो है और मैनुअल का तो काम में थोड़ा बहुत फर्क है। मैनुअल में काम करने में बहुत क्या कहो, मतलब थोड़ा बहुत अच्छी लगती है लोगों का, जो तुरंत लेने के लिए आते हैं तो डिजिटलाइज जो है लेफ्ट होते
0: जी जी है। तो जी तो आप तो, साइन बोर्ड में आप कौन सी भाषा में लिखते हैं अधिकतर?
1: जी मैं ऐसे में आज करके हम तो बंगाली हूँ
0: जी,
1: और हमारे यहाँ पे बंगाली ज्यादा चलते हैं, बंगाली और साथ में थोड़ा बहुत हिंदी भी कर लेता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी में।
0: अच्छा अंग्रेजी और हिंदी का भी आप लिखते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अनूप जी। तो
1: सेंट्रलाइज्ड जो लिखना पड़ता है, और कुछ दुकान अगर में थोड़ा बहुत अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, और बाकी तो बंगाली में चलता है।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम के द्वारा आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज कार्यक्रम में एक गाने का रूप करना चाहता हूँ, जिनका नाम है हाथी मेरा साथ
0: जी,
1: और गाने का बोल ऐसे है, चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींचे चल या बंद है मोटर कार, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी जी जी, तो आप गाने के साथ अपने किसी दोस्तों का नाम लेना चाहोगे?
1: जी जी जी एकदम बिल्कुल। पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, अमर सिंह साहू जी, अनुहार बिहारी भाई है
0: जी,
1: और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, विजय सिंह लखेरा जी, श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र
0: जी,
1: और हमारे का नाम क्या है प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं, इसलिए लद्दाख का मन पवन प्रोग्राम सबके लिए और खास करके आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आप हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहे हमारे कार्यक्रम के द्वारा।
1: जी जी।

0: हेलो
1: हेलो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
0: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
1: जी भगवान जी, कैसे हो आप?
0: अच्छे हैं सर, बढ़िया हैं। आप तो बढ़िया हैं सर
1: जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं
0: जी। और अभी हमारे इधर सर बहुत गर्मी पड़ रही है, काफी गर्मी का प्रकोप है हमारे इधर अभी।
1: अच्छा जी,
0: 44-45 डिग्री गर्मी हो जाती है दिन में सर।
1: अच्छा, आपके मध्य प्रदेश में 45 डिग्री की गर्मी हो रही है, पर हमारे लद्दाख में तो अभी भी चोटियों में बर्फ पड़ रही है।
0: जी, तो बहुत बढ़िया है सर।
1: जी भगवान जी, आप क्या करते हैं वैसे?
0: खेती किसानी करते हैं सर, किसान हैं हम।
1: अच्छा जी, तो इस टाइम आप कौन सी फसलों की तैयारी कर रहे हैं?
0: जी सर, इस समय तो खेत खाली हैं हमारे, गर्मी का है मौसम, तो खेत में कुछ बोते नहीं है सर। जब बारिश चालू हो जाएगी, जब हम सोयाबीन, मक्का, धान इनकी बुआई करेंगे सर।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आपका कृषि जीवन कैसा चल रहा है अभी?
0: बहुत बढ़िया चल रहा है सर, वहाँ बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है।
1: जी, आकाशवाणी के द्वारा आपको आपके कृषि जीवन में कोई सहायता मिलती है कि नहीं?
0: जी सर, मिलती है ना, जब आप किसानों के लिए कोई कार्यक्रम लेके आते हैं सर, तो उसमें हमें बहुत ज्ञान मिलता है सर। उससे हम कितना खाद डालना है, कैसा बीज डालना है, सब उसमें जानकारी देते हैं आपके कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से सर। तो हम उस पर गौर भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं सर।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके सिवाय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है कृषि संबंधित किसी फायदे का आप लाभ उठा रहे हैं कि नहीं?
0: जी हाँ सर, उठाते हैं ना, हमको सभी चीज का लाभ मिलता है किसानों को।
1: अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप अपने कृषि जीवन के साथ और क्या क्या करना पसंद है आपको?
0: सर मुझे जब अपना कृषि से टाइम मिल जाता है तो मैं आकाशवाणी पे गाने सुनता हूँ सर।
1: अच्छा जी, आप गाने सुनने का शौक रखते हो और गाने गाते भी हो?
0: नहीं सर, गाते तो नहीं है, गाने गाने का शौक है, गाने सुनने का शौक है सर, गाने का नहीं है।
1: अच्छा,
0: और बचपन से मुझे रेडियो से बहुत लगाव है सर। मैं जब छोटा सा था, जब से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ, और सर आकाशवाणी अभी तक भी मेरे बहुत प्रिय है सर।
1: तो आप रेडियो से काफी सालों से जुड़े हैं, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है अभी तक का?
0: अभी सर मुझे तो 90 के दशक के हैं, अलका याग्निक जी, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, अभिजीत जी, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है सर।
1: तो भगवान जी, आज के कार्यक्रम के द्वारा आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सर आज तो मैंने एक फिल्म है, अखियों से गोली मारे, और गाने के बोले तेरी अख जो मुझसे लड़ गई रे, ये गाना सुनना है सर। और इसमें सोनू निगम

0: जी की आवाज है और एक आवाज और है, मैं उनका नाम भूल गया सर।
1: तो इस गाने के साथ अपने साथियों के नाम लेना चाहोगे आप?
0: जी हाँ सर, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, सावनकर गंगाधर जी हैं, सुनील झा जी हैं, केसर सिंह राजपूत जी हैं, और हमारे पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, अविनाश जी हैं, और पूनम दीदी है कानपुर से, और जो रह गए सभी श्रोताओं को लाइव डेलीकेट रहेगा सर जो सुनेंगे।
1: भगवान जी, आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा रहिए।
0: धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, मैं पुंचक बोल रहा है सर, मैं लेट है सर।
0: जुले पुंचक जी, कैसे हो आप?
1: मैं बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैंने फोन बिल्कुल ट्राई करते करते अभी बड़े मुश्किल से हो गया सर जी।
0: जी पुंचक जी, लाइन थोड़ी बिजी रहती है पर आपका फोन लग गया।
1: इससे पहले भी मैंने ट्राई किया था सर, मेरे को बिल्कुल नहीं जा रहा सर। हर हर थर्सडे को मैंने ट्राई किया था सर, तब भी नहीं जा रहा। आज बड़े मुश्किल से हो गया, इसलिए मैंने मुझे बहुत खुशी हो रहा है सर।
0: वैसे आप करते क्या हो?
1: मैं एक रिटायरमेंट हूँ सर।
0: आप एक पूर्व सैनिक हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
1: सर।
0: जी आप लद्दाख स्कॉट के सैनिक थे?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अभी मैं रिटायर होकर कुछ साल हो रहा है सर। अभी मैं इधर थोड़ा कम कर रहा है सर, इधर जमींदारी का कम कर रहा है सर।
0: बहुत बढ़िया पुंसक जी, तो आप एक पूर्व सैनिक है, हमें बड़ी गर्व होती है। तो अपनी ड्यूटी के टाइम के कुछ लम्हे हमारे साथ साझा करना चाहोगे?
1: अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता सर। अभी मैं थोड़ा इधर से कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर काम भी जाता है, बिजी नहीं रह जाता ना सर जी। थोड़ा मैं कुछ दिन मौका कम करने का, बात करने का, बातचीत नहीं करने का ज्यादा मौका नहीं मिला सर जी।
0: जी जी जी तो आप रिटायर हुए अभी, आपको कितने साल हुए?
1: अभी तो कुछ 3-4 साल हो रहा था जी।
0: जी जी तो आप अपनी रिटायरमेंट इंजॉयमेंट ले रहे कि नहीं?
1: बिल्कुल सर, मैं बहुत इंजॉय ले रहा था जी। अभी मैं ज्यादा कम भी नहीं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते था सर। बहुत कम किया था जी। अभी बहुत, अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक फौजी की लाइफ और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस लगा?
1: अभी बहुत फौजी में तो बहुत ही अच्छा है सर। मैं थोड़ा टी आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर जी। अब थोड़ा घर में थोड़ा बची तो कम हो रहा है सर। उधर से उधर ऑनलाइन जब मतलब हमारा टेलीफोन लैंडलाइन होता ना सर, उस टाइम घर में थोड़ा बातचीत होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। पहले जमाने में तो उस टाइम तो लेटर भेजता था सर, अभी पूरा फोन लग गया था। फिर थोड़ा फोन भी थोड़ा इतना नहीं चढ़ रहा था, थोड़ा कम चढ़ रहा था, इसलिए दिक्कत हो रहा था। अभी तो मोबाइल भी उधर टावर भी पहुंच गया सर जी, फोन भी कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आराम से हो रहा है सर जी।
0: जी जी जी पहले तो आप यानी कि हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो कम्युनिकेशन और रोड्स की बड़ी दिक्कत थी, खासकर लद्दाख में, पर अभी तो इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। जी पुंसुक जी।
1: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर
0: जी। पुंसुक जी तो आज के कार्यक्रम के द्वारा आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आप में गाना अच्छा सर सुनाना चाहता हूँ सर, का होना प्यारी।

0: मैं जब फौज में भी मैं थोड़ा डांस भी करता हूँ सर, जब बड़ा खाना होता है ना सर, तभी भी मैं होते गाना डांस करता हूँ सर, थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को मनोरंजन करते हैं, तो सभी लोग हंसते हैं, सब खुश करते हैं, मैं सभी लोगों को खुशी के साथ रखता हूँ सर।
1: बहुत ही बढ़िया खूबी है कि आप गाते भी है, डांस भी करते हैं, सभी का मनोरंजन भी करते थे। बहुत बढ़िया पुंसुक जी। तो इसके साथ आप कार्यक्रम में अपने किसी साथी के नाम लेना चाहोगे?
0: हाँ जी, अभी मेरा एक दोस्त है सर, तंदीम खिंबा, जो ठीक से रहने का ठीक से कर रहने वाला, और एक हसीन है सर, वो हसीन कलामी का रहने वाला सर, बस वही मेरा दोस्त है सर।
1: जी, आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर बात कर रहा हूँ, नांदेड़ जिला, महाराष्ट्र से।
0: जी सर, आप कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया।
1: आप सभी लोगों को ईद मुबारक सर।
0: जी जी, आप सभी को आकाशवाणी की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जी
1: धन्यवाद सर।
0: क्या करते हो सर?
1: सर मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: जी आप कौन से विभाग से रिटायर हुए, हम जाना?
1: किसान के मंडी से रिटायर हुआ सर।
0: अच्छा,
1: मंडी रहते था
0: जी।
1: किसान जो खेत में पैदा वाला ज्वारी, मूंग, उड़ीद, कपास, ये सब मंडी में आता था। उस मंडी में मैं पूरे वो उसका बीट होता था, रेट रेट होता था
0: जी।
1: हाँ, रेट के मैं लिख लेता था
0: जी।
1: और वो हिसाब से वो गवर्नमेंट टैक्स भरते थे वहाँ के व्यापारी, उसी ऑफिस सर, मंडी के ऑफिस।
0: अच्छा, तो आप एक कृषि से रिलेटेड मंडी में रिकॉर्ड्स का काम करते थे?
1: जी जी
0: जी सर। आपने फिर वहाँ पे कितने साल?
1: मैं 37 या 37.5 साल काम कर चुका हूँ सर।
0: जी जी, तो आपने 37 साल में तो आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिले होंगे वहाँ पे।
1: बहुत बहुत चेंजेस मिले
0: जी, तो उसमें आपको कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ रही कि हाँ ये चेंजेस आए तो किसानों को ये लाभ हो रही है, या कोई ऐसी कानून बन जाती है कि जिससे किसानों को बहुत दिक्कत होगी, आप बताना चाहोगे?
1: सर कैसा है अभी जब का आपका बहुत से माहौल फर्क होगा, जब टेक्निक ही नहीं थी।
0: अच्छा जी,
1: आज टेक्निक आएगा, रेट्स क्या है पूरे दुनिया में ये मालूम हो रहा सर।
0: अच्छा,
1: वो हिसाब से रेट है रहे।
0: अच्छा।
1: पहले नहीं मालूम होता था, अंधा पीसे खुटा खाए चरता था, व्यापारियों को लाभ होता था।
0: अच्छा,
1: आज कुछ परसेंट, थोड़ा बहुत परसेंट से लाभ होता था।
0: जैसे अधिकतर हमें सुनने को और देखने को भी मिलता है कि क्या सबसे ज्यादा मेहनत करती है हमारे किसान भाइयों पर ऐसा अनुभव रहता है कि जो उसका लाभ होता है वो किसान को इतना नहीं मिलता है, वो व्यापारी उसका ज्यादा फायदा उठा लेते हैं।
1: हाँ सर, अभी पहले था वो व्यापारी उठा लेता था, अभी वैसा नहीं रहा सर। अभी नहीं रहा,
0: अभी किसानों को डायरेक्टली उनका मुनाफा मिल जाता है।
1: हाँ, अभी क्योंकि गवर्नमेंट्स के जो सोसाइटियाँ खोल सर, वो गवर्नमेंट खरीदी कर रहा अभी
0: जी।
1: वो गवर्नमेंट से जो कम हो, ज्यादा हो, भाव ज्यादा हो तो बोनस दे रहा गवर्नमेंट।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ इस वास्ते डायरेक्ट उनको घर बैठे किसानों को फायदा हो रहा है।
0: तो अपने अनुभव के हिसाब से आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि सरकार को, जिससे किसानों को और दिक्कत ना हो और उनको अच्छे से मुनाफा मिले?
1: मैं सरकार से ही बोलता हूँ सर, जो भी अपने देश के माल है
0: जी,
1: जो माल को जो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे तो बिल्कुल ये फायदा होगा सर।
0: जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे हमारे तो अधिकतर गेहूं हो गए, चावल हो गए, वो तो भारत से अधिकतर एक्सपोर्ट ही होता है। जी सर, नहीं
1: जी जी, हाँ।
0: जैसे चावल की बात करें तो शायद इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है जो एक्सपोर्ट करता है।
1: जी जी सर।
0: तो आपको अपने काम के सिवाय और क्या क्या करना पसंद है सर?
1: काम रेडियो सुनता था सर और पेपर पढ़ता था।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: जी।
1: टीवी तो देखता नहीं था सर, मैं टीवी रेडियो के माध्यम से किसान वाणी कार्यक्रम और कुछ खबरें सब सुनता सर रेडियो के माध्यम।
0: जी सर, तो आज के कार्यक्रम के द्वारा आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरे नाम में का तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।
0: तो इसके साथ साथ अपने किसी दोस्तों के नाम लेना चाहोगे आप?
1: हमारे एमपी के भगवान सिंह जी है और गौतम जी, रायबरे जी, तुकाराम जादव जी है और सुनील झा, दिलीप पाव झा, उदयलाल टेलर जी है, राजेंद्र गंगवार जी है और हमारे गुजरात के है अफजल भाई। ये सभी को सर गाना सुना है, आप भी सुनो सर गाना।
0: जी जरूर जरूर, आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं सर आप?
1: मैं श्रीनगर से लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ जी कैसे हो? ईद की बहुत बहुत बधाई यहाँ पहले तो आपको।
1: हाँ शुक्रिया सर, मैं यहाँ सोनमर्ग लतीफ अहमद रैना।
0: अच्छा आप सोनमर्ग रहते हो?
1: हाँ मैं सोनमर्ग तहसीली गुंड।
0: अच्छा गुंड से हो आप?
1: बहुत अच्छा सर, आप सर ठीक हैं?
0: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर जी। क्या करते हैं सर वैसे आप?
1: बस अपना ही घर का काम, ये खेती बाड़ी और कुछ बागवानी यहाँ पे श्रीनगर पे।
0: जी बागवानी करते हो, तो बागवानी में आप ज़्यादातर किन किन चीज़ों की पैदावार करते हो आप?
1: यहाँ ज़्यादा एप्पल की पैदावार।
0: जी जी तो इसके साथ साथ आपका सोनमार्ग तो पर टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है नहीं?
1: हाँ टूरिस्ट यहाँ पे बहुत सारा आते हैं, बहुत सारा रश रहता है, और लेह लद्दाख के भी रास्ता यही है।
0: जी जी तो इस बार तो टूरिस्ट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है सुनने में आ रहा है सोनमार्ग में।
1: इस साल तो बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और जो जजला का टंडल है ना सर
0: जी,
1: अब वो भी तैयार होने लगा, अब 2-1.5 साल उसमें भी लगेगा तो तैयार हो जाएगा, फिर तो पूरा रोड ठीक हो जाएगा।
0: जी जी जी जब ऐसे सुजिला टनल एशिया का सबसे ऊंचा टनल बनके तैयार होने को लगा है जी।
1: हाँ हाँ सही सही सर।
0: तो आप सोनमार्ग के बारे में थोड़ा सा आपने हमारे साथियों को बताना चाहोगे कैसा है?
1: सोनमार्ग तो बहुत बढ़िया पार्क है यहाँ पे।
0: अच्छा जी,
1: यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे लगभग 1,000 कनाल से ऊपर है पार्किंग यहाँ पे।
0: अच्छा जी,
1: हजारों में होटल।
0: जी सर्दियों में वहाँ पे बर्फ भी बहुत पड़ती है, तो आप कैसे वहाँ पे गुजारा करते हैं?
1: सर यहाँ पे तो कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कांगड़ी और ये गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं और कांगड़ी उससे गर्मी करते हैं।
0: अच्छा और सर्दियों में आप ज्यादातर क्या काम करते हैं फिर?
1: सर्दी में तो कम काम, ये टूरिस्ट का काम करते हैं वहाँ पे।
0: तो आज के कार्यक्रम के द्वारा कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर आप?
1: हमें गाना सुनना है कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।
0: तो इसके साथ आपने किसी साथियों का नाम लेना चाहोगे?
1: बस मेरे साथ सभी श्रोता सुनेंगे और आप सर
0: बहुत धन्यवाद आकाशवाणी ले में कॉल करने के लिए, आपको ऐसे ही हमारे कार्यक्रम से जुड़ते रहे।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर

की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: yale
1: nyam patyong mola za na ungle ju ta dak sang ta lena we ka te nga ta dak sa lak len za ta ngol ju shkot pasang ne tene ta rama mangpu nga ta shala za da no dak sang ta jang tang gula tene lene ka ne tene lak len za te nga ta ta yungu ka zuk shi duk tene yang lene ka ne nge jana chi chi chwa za da no te gun school logic mola za na
0: ka sa ta lene ko ne yungu ra jele no ta nga ya ni ta ko lene ko la chi tong ajuk chu ta chi kut pa tok se ta lak shu to enda cho chu ni te chok ma nga ya chu ni ne mi du yale tena so tang ji man met ka ngul lena ये तो उनको लेना जालन दूँ जालन
1: कैसा
0: उनको जालन दूँ पुत्र को गाया जिते ना पूछा रू जालन जिते ना दूँ वो ते ना चोनो ते ना गाया चिर ताको इन्ना जो लेना चोरी शॉल जो जखान जोक से ते कांचु ब्लॉक शुभ जखान जोक से ने मान गाया चोन्याने में दूँ जाको चोन्याने में दूँ जाको सुसु एंटे संग में दूँ चोगाने सुसु लागले चुलु चोई से एंटे में पाल ते एक चिगो ते गुने ते एक चोग जाने ते माने लेने थोक पोते हम जिंगाई लागले ना चो मानो जाने Casa, ते सोंग बसे चेक चिंगाया टोंग बसे म्यून सोंग द रेलुक पुसे चिंग बड़े सोंग देनु माह सोंग देनु याले गानी संग रेलुक संगमा माह सोंग देनु सुसु मंगबु सोंग द रेलुक तता माने रेलुक मंगबु सोंग देनु ता ये का रेलुक भटकान बसे चिंग ती जन गाया ताको रेलुक जखान जोसे रामा लुक ती संगमा जे चो चनु तेबु गाय जिंग जो फा बोन मेके सिकन रेरिन दोन मेनो याले यसंग कोन रेलुक जेरदी ता रेरदी संगमा माने को रेरदिन ते दाम जो थो मिदु तेन गाता तंका बु मा मंगबु छरु बियान तंग जिबु मा कासल जाय तंका मंगबु तंग कुया हेंदा रेलुक खन ओगु छन मेनो ताको रेरदी मा थो सुसुते तंगाल सोर्टिंग आजुक छारु या सुसुन बाते नो तसंगाया अने बातकान जालुक बातकान टोंगपा चोंगा निशु गत याले चुकास तते बु माने लुजी मेट पिसंग ते खाने चेक चेक
1: समा
0: कालास दुग याले कोम बाची बुते समा जालुक खाने थोकने दा पोपाले गाने गाया लागलेन थोना ता चुकतुल चोई चुकदेन चोई फेन कुन दाल तो चोंग नंग ते खाने मा जालोंग फेन कु लेना रा जार मग को चिसाने को इका नता शेचन रूल दिन दे याले कास
1: ता आचिन सब दन लेते ने गुन माइन नाउ ले जुता ई जुंखुर गुन लंगता जालुक मा पोपुरा जा दगुन ले जु टोंगपा संग माते ने गता बेस्ट इंजिन ना रेस सालेंजिंग नंग तने रेस लाजेंजिंग नंग छमे रामा ठीते तने गता मिंगा इंगिस निस बरी सालेन नंग तने शिकोते रामा लुग गुन गता रिए ठीते शिकोच सेंग गता शोल योंग दुपा मुन मांग लेजो तते चुक से तने शोल गुन गता चंग तंग गुला मेते न कजुक शिनो ओमे
0: तते चुक से शोल ते न गया को तने रेलु तें दिनो तने जालुंग बाचे ताको इ जोंखोर थमंगा लरेलु गाय छुन जाना ओचिन दुको मंग दुकपा ताते बुचे जरना सुसु मान मिन जांगान मे सुसु कांगाल थोंग सुसु लाक्सुक शुतिक जरा तोक सेक लेना अजो बोर मिनु पजार दि मा बोर फसन ताई जोंखोर ना माने जालु मिन रा काम सोंग दिन पालिन जुता बोरखान न्युन न्युन रे जेबि जोंबा निबार सुंदर न मा ओतिक मिदु पजार गासा इनदा कोते खान जालु खान लुत तांग ताची सान दुक पजार गासा तां बात थुम ना तांग आया ओतेन बात गु मा तें टू ने जालु बाची से एंटेस दियाम जिक योम मेनु गले चीजना इका लावा सोक्सिता दिक्ति पडलो एंटेसो मे तेमाने को किताब जेला सेल दि रेलु बादना रेलु खने ओंको जंदु तने हिने नोङाय चांगतांग ताई छंगमा इरे छंगमाने तानले कुयु छंगमा जर जो रेलु चेन चांगे न कोरजो छंगमाने चीजना छंगमा चेक रेलु काम सोंग दु पजालि चे काम सोंग जे रेर्जी मेट पिजेस ते काम सोंग दु तेबो रेर्जी जे चे काम सोंग बेसा रेलु पुते काम सोंग दु गले ता रेलु चांगनाने मी मातो मी थमने तानका छेनु सोंग तो तेवो से दुक्ते ता गोनमान से रोग से ता दिन दाको माया सब्सिडी तो से काजुक चिक चो नंग यांग नता यिंग बात पा ना यांग चुली फेटिंग तारा तो खान जोग ते सब्सिडी जात दिन जानना ते यांग आ से चकांगल चुंग छिन दु पय ओ ते कान से चकांगल मंगबु सोंग दि रेलु फांगा नो याले ता को रेलु चे फांग दुक जानना जिरेबे ता को इकेन चंगतांग तो छोला जिरेप सोंग सिपा सोंग ते सोंग बिसंग चे रेलु फांगा नो छिन दु पय ते जे नाम तो सोर पय याले कासिन जु तेक चारु ते माने रेलु तो बान नंग तो को फाइ मि मेमि तुनि फलाम बारे बारे बारे ओखानि नो तक्सान को बान ना गेलेनु याले तक्सान बा थुमनाले माने पुत गो मंग बु सों तुक जे पोते का चेक चेक रेलु काम सों तुक पया कासे
1: कासां दिरिया ओले जो तांग ता रेलु तो पे का टोंग ने रेलु चम जिगो दो यंग मेरा आते ने चम जिग बोरा जाते दो ओले जो
0: कासा ना ता रेलु दुंजा थाल जेब जा लोमा लोग जिकाले तेंगे संग मा जंग मा मा चंगुना टोंग रेत का ताया टोंग तिक थाल ताली तने जेजर गुबजर नबजर टुकजा दुंजा ওটুকটু মেংনু অংজিন জালে তাকসা থকপুর জালু জিবজা গাবজানে কো গামবেত থিনা জালে জি জামে রালু সাংমা জালে ওত কাজালে চেক চিং বাচি খান কাঙালে নক চেক চিক জি জেনা তে রালু পু গাল্লা চেক চিক কাম মানুং জি মান জালে জি জামে খাসান মাং বুং পা তেনে ছাক জানে তে দাম তে জুমে তে চি পিসং মেট পিন জালে তাকসা ছা গা জালে ইখানে নাস ডংবারে রে সে টাক রে রে নিউ রি চেরন ওরতে ছাক পু ইয়ো তেনে চেক চিক

Dagsang ejerange gamyul pe skatlon tikrim sanazats tikrim phulkan in pin dishki dolkar yang tikrim ekotik zat kan sunamangchuk. Medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur FM 101 megahertz par hum Akashvani le se bol rahe hai. शाम के 6:40 हो रहे हैं. लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम.

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ताल फिल्म से ये गीत, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार ए आर रहमान।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आप यस बॉस फिल्म से गीत सुन रहे थे। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यंगिस्तान फिल्म से ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीतकार कौसर मुनीर और संगीतकार गीत गंगुली।

अभी आप परदेस फिल्म से गीत सुन रहे थे, कुमार सानू की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार नदीम श्रवण। आइए अब सुनते हैं तुम मिले फिल्म से ये गीत, जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार सईद कादरी और संगीतकार प्रीतम।

0: Kasata dosto tsapi kistingni Ladakh sana na sultang dilshat sana chat.
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।

0: Ibu Akashwani le in kasatyang chindolma na natsul sanajat Ladakh sinang jamni chil dani koryu wi jak si chis tang nyampu jajim na chok shiktar dik chate nok shiskyong jon ba wi ke sakse ne indus river corridor green initiative las gul nangjin thikse gon pe chok ne sa kya sal te yot kani nase ka question la chu chuk che si las gul ji gi kuzuk chate nok diring idul kadir tat gus kang shan ni thok ne sie jate nok sata na chul kunjip sal tangyam po sana chat diring jamni chil dani koryu gi jak sin jik tang nok lojung junil de ches nge jaga chilo chik tong gup kya tun chu ton sum ne phal la koryu gi jak sia ja din jik tang nok ibo gelchi chokspe koryu tal koryu gi degree me khak chige chul la siste saji ka shok skop che se pya ha go tang che se degree me chul la talik cha din jik tang nok jamni chil dani koryu gi jak iskap shishkyong jon ba wi ke sakse ne sta to khina nga goschang la chu chuk che se las gol jik thik se gon pe sar ka ne sakyat hector tun tang fed lak sami ka ujung nga de nak chok las kung tang thik se gon pe ngis ke zung re la shul te nok la skule na nga lak chuk na chok shik dom sto nga jik chuga cha te nok is kor la ladak nak chok las kung Ponbo, Shurbir Singh is Shadazad.
1: आज हम सब इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसा एक दिन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जागतिक पर्यावरण दिवस इस दिवस पर आज फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद टिक्से गोम्पा हम यहाँ पे एक प्लांटेशन एक्टिविटी कैरी आउट करा रहे हैं तो इस प्रोग्राम में हमारे HLG सर के डायरेक्शन के अनुसार एक हमने प्लांटेशन साइट सेलेक्ट की है जहाँ पे हम 5,000 to 6,000 पौधे लगाने वाले हैं इस स्पीसीज में इसमें हमारी लोकल स्पीसीज भी है जैसे कि सेलिक्स रूबिनिया पॉपलर पकिया अपना सिबक थॉर्न लिएस्टर ये सब स्पीसीज से हम वो जगह को हम ग्रीन करने जा रहे हैं उस प्लांटेशन एक्टिविटी के साथ हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों के द्वारा भी प्लांटिंग करेंगे विलेजर्स भी आए हुए हैं मोनेस्ट्री की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स है तो हमारे यहाँ के मोनेस्ट्री के रिम्पोचे भी इस प्रोग्राम को ग्रेस कर रहे हैं इसके बाद हमारा जो जी सर के एक विचारों के अनुसार हम वहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी बना रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग स्पीसीज जो अगर हम यहाँ पे ट्राई कर सके इस साल जो अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर मतलब थीम में समझ जाता है कि इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में अच्छा से हमको मैनेज करने के लिए हमको प्लांटेशन का कितना बड़ा जिम्मेदारी है पूरा अपना जो LG सर का डायरेक्शंस है उसके अनुसार हम यहाँ पे एक्टिविटी आज यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं
0: BJP ladaki chokne jamni chidani khoryu ijak tia jadin jiktang le tongke rinang asangme choche silas gul jiktang yampo goshtang lak chuk chuk che silas gul jigang shultenok i las gul po BJP tipa tashi gelsan khachu ujuk se na shultenok itus BJP goshkyung guni thras kujas gelpi wangyas kujab dorjang chuk kujab ngawang samstan kujab rigzin chubi kujab rinchen dolkar lobjang larje tang thinle chungit gun thetenok lak chuk chuk che silas BJP headquarter ikchang mankang tang le tongkeri na lopta so se nanga talik cha tenok lehe chokne lamdon moro school she nanga jamning chi dani koryu gi jak chi ches tang nyampo namle phogure school la gospel che se degree mji talik cha tenok ina tu la koryu gi solta gun school la gospel che la shatpa di ches tang jime dandur jik loptu kuni pala talik cha tenok degree mis kab le ho chuga jat kan dr mamadin khani dakse jingla mi re re dani ka si shurgo jyot khan school la shang school in jiktang changma lak chuk chuk ches stendel chani sa jing bad ge chat ches lok shuk skop ches tang kar puling chok se thablam lakle na kyung chi la shi chal te no takma chiki na nga khoryu gi jag zong kha yar ga si spon bo pankash rajput ji ujuk se na nga sia cha te no e tu las kun so se spon bo chis kam de spon bo nga de inspector the te jung las kun so se spon bo kun tang ga mil so se go ba kun tu sa cha te khoryu shung skyo be skol la sung ro sa te no jamni chi la ni khoryu gi jag ga khalse residential hostel tang nak chok las kun kyang skore na nga ek pet ma ke na mi las kul le nang jin gochang nak chuk chuk che si las

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

दाक्सांग इजरांगे नोरजिन डोलमा तंग छोपागुने सालकाने लुरिक सनासाच ngaje akashwani lini juin jiktain pito chuto tlun tangskar ma jip chu charuk kasata akashwani srinagar ne urdina nasultang tapsara sanachat.

0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نارکو ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کیے جانے کا دہرایا عزم۔ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری، ڈرگ سمگلروں کی 6 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں ضبط۔ ماحولیات کو تحفظ دینے کا عالمی دن آج، وزیر اعلی عمر عبداللہ نے حیاتیاتی تنوع کو تقویت بخشنے کے لیے اختراعی اقدامات پر دیا زور۔ اور جموں میں محکمہ موسمیات کے علاقائی مرکز کا قیام مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کیا افتتاح۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نارکو ٹیررزم کے خلاف 55 روز پہلے جموں سے شروع کیا گیا ابھیان اب ایک تاریخی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گاندربل سے ہمارے نمائندے صابر ایوب نے خبر دی ہے کہ گاندربل میں آج منشیات مخالف ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پچھلے 55 دنوں کے دوران 1036 ایف آئی آر درج کیے گئے، 1128 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے، 3 سمگلروں کی 100 جائیدادوں کو اٹیچ کیا گیا، علاوہ 700 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے، 130 ڈرگ سمگلروں کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے۔
1: تسکروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں، اب تمہارے نیٹورک ایک ایک کر کے ڈھا دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا حلف بھی ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہر ڈرگ تسکر، ہر نارکو آتنکوادی اپنے اپرادھوں اور اپنے پاپوں کی قیمت چکائے گا۔ آئیے ساہس کے ساتھ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، آئیے ایکتا کے ساتھ ہم مل کر کے آگے بڑھیں، آئیے وشواس کے ساتھ ہم مل کر آگے بڑھیں، اور جموں کشمیر کی تاریخ یہ درج کرے کہ ہمارے 100 دن کے جن اندولن میں گاندربل نارکو آتنکواد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاندربل کے لوگوں نے وجے پراپت کی۔
0: ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں سے کی تھی، اور انہوں نے تمام اضلاع میں منشیات مخالف پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی۔ ابھیان کی شروعات کے ساتھ ہی لیفٹنٹ گورنر نے منشیات کے نیٹورک کو ختم کرنے اور اس دھندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقع سزا دلانے کے عزم کو دہرایا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر منشیات کا کلغمہ کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک استاد سعید اعجاز احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ مکت بھارت ابھیان، اس کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، جموں کشمیر پولیس نے کام کیا ہے ڈرگ افیکٹس کو ختم کرنے کے لیے، وہ بالکل قابل تعریف ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، سکولوں میں ایسے ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں جن کی بدولت سے ہم نے دیکھا کہ ڈرگ کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت بہت زیادہ کم ہوئے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں، ہماری جو سوسائٹی ہیں اسے بچ سکے، فیوچر جنریشن ہے وہ ان تباہ کاریوں سے بچ سکے۔
0: منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے سری نگر کے سکھ باغ، لال بازار میں عادل احمد دوبی، حاکہ بازار میں ارشد احمد شیخ اور ٹنگ باغ خانیار میں اویس احمد میر نامی ڈرگ سمگلروں کی جائیدادیں اٹیچ کی ہیں، جن کی مجموعی مالیت 4 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ گاندربل پولیس نے کرفلی محلہ سری نگر کے رہنے والے پرویز احمد ہنگا اور اس کی اہلیہ کے نام پر درج زناکوٹ سری نگر میں واقع 2 کروڑ 13 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کی ہے۔ مذکور اشخاص منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اننت ناگ میں بھی محمد اشرف ڈار نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی گئی، ضلع میں 4 ڈرگ سمگلر گرفتار کیے گئے۔ اونتی پورہ میں محمد یونس قریشی نامی منشیات فروش کی ایک دکان مسمار کی گئی۔ جموں صوبے میں بھی پولیس کی منشیات مخالف کاروائیاں جاری ہیں۔ سانبا ضلع میں کپواڑا کے رہنے والے بابر احمد پائر اور محمد عابد نامی 2 ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ضلع میں بشنا جموں کی رہنے والی شیما بی بی نامی بدنام زمانہ منشیات فروش کو حراست میں لیا گیا۔ ریاسی میں راکیش کمار نامی منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا۔ दरियासना में अपने गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुलमुल्ला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर में यात्री भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्री भवन के मुकम्मल होने से खीर भवानी आने वाले यात्रियों को रिहायश और कयाम तवाम की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। इस प्रोजेक्ट को 3,85,00,000 रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इसमें लगभग 900 श्रद्धालुओं के रहने की गुंजाइश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और श्री अमरनाथ जी यात्रा कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि इन सहूलियात से आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बिलाखलल सहूलियात की दस्तियाबी और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर खदमात यकीनी बन जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक जिंदा और जावेद करतास है जिस पर सदियों से फहम और दानिश इख्तरा फनकारी और दस्तकारी नक्श की गई है। श्रीनगर में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले रंगे कश्मीर नामी सकाफती फेस्टिवल से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी मुल्क की मजबूती उसकी दौलत और ताकत में नहीं बल्कि उसके जज्बे रिवायात की गहराई और उसकी सकाफत की फालियत में मुजमर होती है।
1: मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल और एक्सपो का ये चौथा एडिशन इस विरासत का सम्मान करने का एक अच्छा माध्यम है। बड़े स्तर पर सांस्कृतिक महोत्सव प्रदर्शनी विरासत समारोह शिल्प प्रदर्शनों के आयोजन के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान की जीवंतता की प्रमाण है। इस एक्सपो को मैं एक जीवंत पाठशाला के रूप में भी देखता हूँ जहाँ परम्परा और इनोवेशन इन दोनों का संगम दिखाई पड़ा है, जहाँ पुराने नए को प्रेरित कर रहे हैं और जहां आवाम एक साथ आकर उस विविधता का उत्सव मना रही है।
0: इस मौके पर वादी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फिल्म साज मुश्ताक अली अहमद खान को अवार्ड से नवाजा गया। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
3: मैं बड़े अदब और बड़े गुम्बले ये कहना चाहता हूँ कि खुशी तो होती है, कोई शक नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो मेहनत, जो एक कंसिस्टेंसी मेरे काम में रही है, लगातार मेहनत करता रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, थिएटर, टेलीविजन और खासकर जो मेरा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का, उसमें जो मेरी मेहनत और काविशें रही हैं उसको कहीं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सराहा जाता है तो मुझे खुशी जरूर होती है। और मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा कि उनके हाथों मुझे इज्जत अफजाई की जाए।
0: आज माहौलियात को तहफ़ देने से मुतलिक आलमी दिन है। आज के दिन हयातियाती तनावों को तकवीत बख्शने, नींद आलूदगी को कम करने के लिए दरकार लाजमी इकदाम को उजागर किया जाता है। इस बारे में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
4: क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना, हम कहेंगे कि कश्मीर में तो हमारी इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो फिर क्लाइमेट चेंज क्यों है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हमें रेनफॉल आता है, स्नो आता है, तो वो तो वेस्ट से ही आता है, इसलिए ये पोल्यूटेंट्स, ये ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारा जो है यू नो इट सर्कुलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए हम कश्मीर में तो हम उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वी फेस द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि एक्शन प्लान्स पर हमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पाएंगे लेकिन हम अपने आप को रेजिलिएंट बना सकते हैं ताकि जब जब ये क्लाइमेट एक्सचेंज आएंगे, जब जब ये क्लाइमेट डिजास्टर्स आएंगे तो उसका हम पर असर कम पड़ेगा।
0: वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने समाज के हर तबके पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में माहौलियाती निजाम को तकवीत बख्शने, नीज यहाँ के सब्जे और हयातियाती तनाव को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में अपना कलीदी रोल अदा करें। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत देरपा तरक्की के अहदाफ की हुसूलियाबी के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की वादाबंद है। वज़ीर-आला ने आज जम्मू कश्मीर हाउस नई दिल्ली में एक पौधा लगाया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी माहौलियात के दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में किसानों, नौजवानों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी तंजीमों पर जोर दिया कि वो माहौलियात को तहफ़ुज़ देने और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मुतहद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि जंगलात को फरोग देने के साथ साथ यहाँ के आबी ज़खायर को तहफ़ुज़ देने की अशद ज़रूरत है। आज के दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से यूटी के सभी अजला में तकरीबात और शजरकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुए। डायरेक्टर जनरल पुलिस ननिन प्रभात ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में शजरकारी मुहिम की कयादत की। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरों ने जम्मू में पार्टी के एहतमाम से मुनक्कद शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार बारामूला में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सीनियर सियासतदान और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुदरती वसायल के तहफ़ में संजीदगी का इजहार करना चाहिए। उन्होंने दरियाई जहलम की शान रफ्तार बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पापोर की तरफ से NIFT बड़गाम में माहौलियात के आलमी दिन की मुनासिबत से सॉयल साइंटिस्ट मीट 2026 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वहां शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
5: हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल जो सेरी कल्चर है वो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे इसको ग्रूम करेंगे, लीफ ऑफ क्वालिटी जो है उसको ठीक करना है, जो काफी स्पीसीज है सीड में वो कैसे हम अच्छा बनाएंगे ताकि यहाँ की प्रोडक्शन अच्छी बने। एवरी प्लांट इज मस्ट, वेदर इट इज मलबेरी, वेदर इट इज पाइन, वेदर इट इज एप्पल, वेदर इट इज चिनार, वेदर इट इज पॉपुलर, जो भी है, तो हम किस तरह से प्लांट को ठीक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है, जो ऑर्गेनिक है, उसका यूज हो। बाय डिफॉल्ट ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक रखना है फ्यूचर के लिए।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बेंगलुरु में एक तकरीब के हाशिए पर कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार के साथ मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कायम किए गए महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लोगों तक मौसम से मुतल्लिक बरवक्त जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा,
6: कुछ ही सालों में हमने 4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, ले, और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार रेन फॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। इस कदर जब विस्तार हुआ तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिर्द और नवा के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा।
0: वज़ीर सेहत सकीना अंतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गैर मारूफ सियाती मकाम को सेहत के नक्शे पर लाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। कुलगाम में जिला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जिले के 5 चिनपत्री इलाके में सियाहत के बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमे सियाहत के अफसरान को इस बारे में जरूरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो ने जरूरी सेक्टर को तरक्की की नई मनाजिल से हमकिनार कराने के लिए किसानों के हक में जरूरी कर्जा स्कीमों की मौसर अमल आवरी पर जोर दिया है। वो आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इन स्कीमों की पेशरफ का जायजा ले रहे थे। अटल डिल्लो ने जरूरी कर्जों की फराह

0: चला ना पता है तीन चार जमाना ये गेम पुस ना दी आगे खेरे ये गेम ही वजह से दक्षिण ये पहचान चियो छना दी गेम पो ना काफी दुन ले खेर बा हेल्प बस पाया और काफी मोटिवेट बस एज अ बोमो ना ता ची ची बांग यान चिन सुजर खान पो हा दी आंदी तो छियो चुकी ना ता बोमो ने संदी चीज पे काफी आगे एक्सेल बांग यान चा दुजर खान ची चुक्षी छना दी गेम पो हेरा जने पहचान ची ता सबसे पहला दो मेन मंगारा फिजिकली दी ची फिट जक्स जर्मो बारदे कना काफी दूर छना दक्षानी जमाना ड्रग्स इतम चे एडिक उठा लंगाते यूथ ओदन ओदो चोक छी सुनि कना गा दूर जक संगा स्पोर्ट्स चोक शंगा एडिक छाचु से और गाती लद्दाख दो मेन में इंडिया फील लदि चे रिप्रेजेंट चंगा हेल्प जस
1: पर विन लेता टाइकोंडो खना गाता दक्षा स्टाइलंस का जुक शिक्षित याद नंग तिउ ग्यूस मंग छत मायोंगा खो अमाना इस्कोल पता माने मेते तेने खोन स्टाइलंस पुस्तर पंग लचु संग पसंग ता टाइकोंडो स्टाइलंस पुची नक तिउ गाता साल पुजिक जातना
0: Taekwondo Olympic sport chain gang atang jese ngatang parents sa kafi hala di tsuxiong wat padang de ni phuni di tsuxi bat pe la football chi se cha da volleyball chi se cha no to chiz gang me wala ngate zer ni zata do kishti me pair rakhoge to dub jaoge zer khanchi tsuxi in maya jese ngate zega professionally ngate zaga doctori bana ya professionally ngata taekwondo athlete dan ya professionally ngata volleyball player dan na professionally ga tsux field chang in hala ngata di chiz professionally choose chuar gos pat paya agar ka to daksanga school time काफी गेम सक्सेस पिन हा ngana ode game gama participate bas pina daksang adi kairang namu interview yong chamen min chana taekwondo jese olympic sport chi hala odu tsuxla ya non olympic sport in ode ngata knowledge yong ma zaruri in kyunki olympic sport se alag point chi chi non olympic sport se alag point chi chi chana olympic sport se competition man high level yong chin ja jabana ngara pato ek sport se andi chi sports pudi chi excel lo te mene di chi age yo te mene hala olympic yang yong yong sabse main chi chana dunga ta samba tang mar go shin ki ओलंपिक स्पोर्ट्स चे न आता ची फायदा दुख दोन नो ओलंपिक स्पोर्ट्स चे न ची फायदा दुख
1: कसा तेनी शनास पर मिल लेता गेरांगे हलाले तेनी स्टेट इल्दाने कर से स्तनो गेरा अर्जुन इल्दाने का डिस्ट्रिक्ट इल्दाने कर से स्तनो त्यो मानते गेरा इंटरनेशनल दाने का जमनिंग शील दाने का गेरा सलियंस कुन नखख लेने न नपा सोंग पादा गेरांग रंगे जर्नी ओ तेनी गाता नेशनल इल्दाने का यो जाने तेनी कजुक शिगुत पिन कजुक गेरा थोंकम जक एक्सपीरियंस रिक जो
0: सबसे पहला तंग अच्छा स्टेट डिस्ट्रिक्ट सख्स चना तंग तंग लोकल टाइप चीज शोतुन मैं ले चाहे बंदे से इक्विपमेंट मित पा दिस एक्सपोजर माथो बहुत पिन छाना जब फर्स्ट टाइम गाता नेशनल छाना मैड रिक थोंग मना दे किकिंग पैड रिक या गाता चेस गार्टून स्पेशल रिहाला एक्सपेंसिव हो मत पसंद दोन माँ माथों में स्टार्टिंग कर से खो रंग मना अच्छा मना मुश्किल चीज चुख सोंग मैं अच्छा से बना गाता चंग दि चुख चीज सुन एक्सपीरियंस खो रंग मेत पना अच्छी फील ओदे चीज सुन सो मा समय में छाने गा चो नेशनल सेन छा ना गाता हाला एक्सपोजर थो बिन सोंग हम इसको पहन के खेल सकते जर खान जी चुख से या गाता इक्विपमेंट इन दून दून यों मत चुक या गाता दि चुख मैड चिकर से ना दि चुख छा चुक पहला पहले गन चुक चुक मैट करते जाने डिसबैलेंस हो या ले चाहे वाना गता आता एक्सपीरियंस में पसंग अति फिल्म सोमा सोमे गिन मौदुन छना दुचो दुचो शिबेन नेशनल लेवल का हाला फर्स्ट टाइम 2018 मेडल लॉन्स पाया देखना अदु चो का जर्नी अंग ता जब नेशनल मेडल लोंग मना तंगा चा अदु चो शिसो मा अब नेशनल मेडल लगे इंटरनेशनल फिल ता तैयारी चो जर खान जी चो देखना इंटरनेशनल फिल दे से तैयारी चो दे से तैयारी चो किंग अचा 2020 अंग हाला कोविड चा नंग अचा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स उत पिन मा ओदे ट्रायल उत पिन दा ना ओदे ट्रायल उन यांग अचा गा अर्सिया सोंग छना गा फर्स्ट टाइम नी लाइफ यांग ना पहली बार गा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स रे छु इवेंट यांग गा सिलेक्शन सोंग माया देन ओदे इवेंट में सिलेक्शन सॉन्ग सर गया अपना कोविड की वजह से 2021 हम पोस्टपोन 22 हम पोस्टपोन 23 हम दोबारा यहाँ ट्रायल सॉन्ग लेकिन 21 या 22 हम ट्रायल पर सॉन्ग में मैच है ना दें इसके यहाँ सिलेक्शन सॉन्ग में बट 2023 की फील बोली हार्ड रही होती पिंचा जब नहीं स्ट्रेंथ बोली कम सॉन्ग से इनमें छना बस हाला ओदे यहाँ बाहर ना कोच वोच तक हायर बसे खुआ ज्यादा अमाउंट पे बसे नहीं फील रहा दी चीज पे दोबारा सिलेक्शन छे फील अम्मा इंपॉर्टेंट होती क्योंकि गस दिन सकपदी चिरसे से ना नी फिल्ला उदो हाईएस्ट अचीवमेंट इन में चा नंगा क्रेज आउत पिन हंगा रंग आउत पिन देखा ना आवाज ओ चो बाहर न को सहायर बसे दु चो चो प्रैक्टिस रिक्तांग से 2023 अंगा आती लद्दाख फिल्ला दो ना आती इंडिया फिल्ला फिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एंड क्वालिफाई चेस
1: कसा दिस थिंग ने गेरा निस्तुंग इशुर संगे नंगा 2025 ना जर्मनी ना
0: जर्मनी ना
1: एक्सपीरियंस परीक्षा
0: 2023 एक्सपीरियंस सन हाल फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम रिसो में ने लगा अच्छी आवाज दी चिक हेल्प चोस पिन बट 2025 यांग थैंकफुल गती एम पी हाजी हनीफा सरी गौस गा हाँ जर्मनी छे फिल्ला हेल्प चो स्पिन माया ले खोज गा टी आंटी स्पिन की यंग हेल्प गोशी ना जेर गादी का हेल्प बाई होत जेर खांची चोक शिक्षा ना गा संगा रिसनिंग ना खुआ थैंक यू जेत की खोज गा नी टैलेंट

0: po samjai song sengi talent po respect ba sanga di chos field changa lage cha help chos cha 2025 ni fila matlab 2023 jab mas qualify bas pin pehla female athlete dan mila da khe gas world dynasty qualify chana chana 2025 qualify chhi filangi nango sa yang hangar chu male 2023 to kar liya 25 ko bhi karna hai zarkhan ji sochna chama na then 25 ang qualify chen dak sangi next target 2027 korea olympic korea world dynasty games inya chana di chi sunanga tayari be not lekin 2023 चाइने दोस्त सरगा पनंगा 25 जर्मनी दोस्त से फिल्ला काफी हा 2023 दे एक्सपीरियंस होत पना 25 पे रंगा दिस प्रॉब्लम मसो याले छनंगास काफी ngari तरफ से जितना हो सकेगा स्ट्रोक तां से ngati लद्दाख फिल मेडल खम कोशिश जो स्विनले बट अनफॉर्चूनेट लिंगा क्वार्टर फाइनल हराई सोचा तो मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यंग दिस ऑफ एथलीट रियो ऑन द गया गन ला साल साल सप कुंती गवर्नमेंट इज हेल्प जो से बाहर न कोच खों से दे से खो ट्रेनिंग तंग से न खों द चले बिन दिया गति ता दिस ऑफ शियोद में दिया लेगा गता गति लेवल चिके ट्रेनिंग रिक जो से दिस लेवल चिके लेसन में
1: शिनास पर मिले दक्षा सुख पहला ले दोम्स गिरा ला मेडल यम तक मत समझ के टू समझ चैंपियनशिप बिना गिरा है खक तुस्ते टू पार्टिसिपेट जाते टू
0: स्टेट लेवल के तंगा चैंपियन ইন্ডিয়ালে দক্ষা সব মানে হারাইক মাছাইন ছানা ন্যাশনাল লেভেলে অঙ্গি লাগা মেডেল কাফি হত পায় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন লুসিনগা ফেডারেশন কাবুনিয়াঙ্গা দো দো গোল্ড লাস্ট টাইম গা সিলভার দো মিন মা অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস এ নয়াং হায়ার অ্যাচিভমেন্ট ইন মায়ালে অল ইউনিভার্সিটি গেমস चार गोल्ड दो सिल्वर दोन दो ब्रॉन्ज दियाले गंग अचा दि चो शिक यंग मत पया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दे ऑल इन यूनिवर्सिटी यंग ता जितना अच्छा मेडल को ना उतना अच्छी सेमेस्टर फीस सब माफ छिन छात पयाले छना गा दस सबवा कंसिस्टेंट फीस माफ छिन सों सिन्या लंगारी दाना गेम ही वजह से जिसमें गा मेडल यंग में हिसाब ना फीस सब माफ छिन छना छना गा दक्षा ग्रेजुएशन अंग माफ फीस माफ सों से जो सीन या पीजी अंग दक्षा लास्ट सेमेस्टर दक्षा छाचिन कुछ दिनों में एग्जाम छना ओदी फिल लंगा यंग फीस सब माफ छेन यंग सोंग सीन छना दक्षिण की नेक्स्ट टारगेट मास्टर्स इन या एमपीएड दो हम चुचें दो इंशाल्लाह अंगी नेक्स्ट ईयर लास्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन चाहना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यंग एज लिमिट चो मजा ले 25 ईयर तक गाता चार चाहिए अन मछ है ना 2025 लास्ट ईयर पो गस कोशिश चुन कि कोरिए दो यंग हिस्ट्री क्रिएट चो से कोरिया गा रिप्रेजेंट बा चुक इंडिया दो मेन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी दोबारा गोल्ड क्यों
1: तेने नितू टिन बांगले चु शहनाज परवीन ले सल्पा जी का प्लेयर जी का हला रंग न रंग आ तेने लोखे लो चेस रंग न सेल्फ कॉन्फिडेंस योद गोशिस पो यांग आतांग आ सल्यांग शिगे नांग हला गेल चेस नांग फम चेस रंग न रंग माने सिम्बा छक माचुगा सिम्फम छा माचुगा बोर गोशिस बो समझे खक चन छर
0: दो मा इंपोर्टेंट इन चेस न हर चीज तंग तंग हला प्लेयर ल छिन लुशिन जैसे कि ग पहला पहला नेशनल ग मा मेडल मियोंग मत पिनिया ले चेस बना दि चिंग मतलब इक्विपमेंट या नि नि लगा दि चिक एक्सपोजर सीमित पसंग ngari ग्राउंड वाली ट्रेनिंग ची बेन गा नेशनल छात पिनिया छन ओदि सना अगर का तुंगा हिम्मत हरे सोमिना दख संगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम सी रिप्रेजेंट छ मेन मिन मेले छन रंग रंग कॉन्फिडेंट चक जरूरी नो न अतिर के बदु तो कोश यत जरूरी गा साला ता कॉन्फिडेंट कोई बात नहीं बेटा अगले बार हो जाएगा जर खान ची जोशिक या दो मिन मसंग हाल आ रही सोंग सोंग न खंगमा जर दो चिस तना अतिया तना मा साला ता चंग मेत पयंग यंग कंपटीशन नो चा दुबा संगते ज्यादा मेहनत बार गोशिया दुख जर खानी पेरेंट सपोर्ट चो न ता ता एथलीट ला काफी हेल्प छ पहले दून लबाड़े छा छना सेल्फ कॉन्फिडेंस मांग आती फिला जरूरी और जब तक रंग नंगो से कॉन्फिडेंस होते मैं नंगता आगे बढ़े छा चमेन छना दो मेन मसंग नंगता हिम्मत हारे छना का तो निंगता गरा लिफ चमेन
1: तंगेरंग न्यामपो हलले लोबजोंग नंग न्यामपो तेने इ चोक सिंग इंटरनेशनल लिदा ने कर सेलिंग सिस्ट न पाल सोंग प कजुक शिगा बैलेंस कजुक शिगा छंग यम स्पोजी का बोरा तेने निस्को ओकेन लखेर तो रंग न्यामपो कजुक शिगा बोरा ले
0: ता दुंग अति का दक्षा ता खचिस तबहानिक चत वाला गेम ना पड़ेंगे संगन चे मिंदुक जरखन दुंग अति के डिपेंड छत किंग अतिस जैसे दक्षानी जमाने इंस्टाग्राम इन्ना या सोशल मीडिया छीन ना लाते वीडियो लिखते हैं दुख पद फोन निकल एक घंटा दो घंटा तंगते वो तो दो घंटे वीडियो मत तंगते तंगते गेम पुआता ना तंग आगे बढ़े ही सचिन छाना दस उस तंगता टाइम मैनेजमेंट जरूरी जैसे दो घंटा आते गेम आता दो घंटा पढ़ाई यहाँ तंग मर को शिक्षक छाना कहीं बार दू चुकी छत ओवर ट्रेनिंग की वजह से हाँ लगाता पढ़ाई को लेके थोड़ा लगाता टाइम कम बार और घुसपत दू अति के डिपेंड छत की जैसे गस गा चुकी चौथ पिंजन एरा कॉम्पिटिशन यो चना गस बुली पढ़ाई को एक घंटे चुकी जाता मत पीने वाले अगर नहीं एग्जाम जो ना गस गेम पोला एक घंटे तंग से ना पढ़ाई ला दो घंटे चुकी छा नती के डिपेंड छत दो गा चुकिया मैनेज छो दो नाता हाँ दू मेन के गाते गेम्स से ना पढ़ाई माना मी चौक खंजी चुक गेम के साथ पढ़ाई भी माना जरूरी इन चाहे नाता इंसान नॉलेज मित गेम chitar sindung na yang that same in ali without knowledge hala bung bu tsok si tsok si zash chamena de fila duran ka dependent king atis di time unga cha manage be waqi khachi zervinda ki time manage chamin zagdan gang ma bahane gin yale jo anji ga insan pula ba ngati nangos na show na dos mana ga tsok shein na time chi phing se khoran cha
1: chi taekwondo nangko ga belt sirka ji kong parale gina tene belt sirka gun halale na ta jaksin nang tene daksi rings lang yang chi shuksana
0: daksa ga black belt first dan in yale starting ta white belt cha na hala nga ta di tsok shein pa gray shi gyong du pale nga ngoz la hala cha zin ngata insan ngoz la shogo tin pa digim pa age che fella starting a white belt in mina dana ya like so ya ya low grading ta de kana blue grading yo chin da blue first blue second zin chi to grading ho chin ngati chana daksa senior category ang black belt yo te mene senior category champion ma dale chana di chi sunya nang belt e sunya nang ajas kafi mehnat bas black belt hasil basin ya chana daksa ngi rank po black belt first dani ya
1: ichuk palep chi sifya ngerang ranga skalas ma mang puji ge ngera fish choko se do donglin choko se do challenges ma mang puji ge song pasang te challenges gun ngerang e tene yu nge fias kap shi gun opportunity ji gen ok something era nen te tak sang gen ang tharkil chen nang yonok pa darung ang ngera ma ongs pen anga tene ladak snang nga ta gyagar ming sa chan cho chesun khalal song pasang kazuk challenges ji gen ska ve jaste ngera nga tusti ga samat pinta ichuk se taekwondo se chis pen nge fias thik inai sam kani thesum shi gen mang sale
0: challenges nga tan du tsuk shyo jese ki china cha cha na hala kharcha ga ma aba khurbar gus pana kafi problem chinu jana nga chang char siblings ut pale nonos ar silva philoga de nomo footballer in miniale chana nomo national football se philo khang na amount chi tang gus chana chunche nomo school la tang mar gus chana do ga ma manage ba bulik aba problem riot pina chana du tsuk challenge phase bar go sind ki china cha chana garden chung se avasta fees saks kan spa le chana nga thankful hot ngari family hamesha marte dam tak aur agle janam bing janam yang nga jana tsuk parents go sha do god di tsuk support bas du tsuk baqi yang challenges na ta injury ri ga yong ma thala athlete in injury yong na ta du tsuk singing mi cha cha la injury yong ta yang yang chamin du zer kan ji tsuk shik ancha zamana era patot para athletes ganta thon utha gani kangma metin lakpa chik metin chi dit game excel benot chana dun gama ati fil bahanik chokshin chana dit chok challenge un gata face bas nga ta life yang age cha zaruri ngi filana injury in na chi nang ha di challenge un gama zero in kyunki nga family support ma khatarna got pin don do men mangara interest hot pana ga chok challenge yod nang koi ni ho jayega thik ho jayega sam khan chi chok shet
1: mal mal de mal ngata ar salens ka zuk shi gana cha nang laskha kazuk shina field jina chadang ngata phama gun la indoor ngendung gun la indoor tenes salpa khorang junu khora indoor te the chong spoyong dukwa ina nga last tan project thop china he sam kan jok spong machu song pa taekwondo salyang stages ne cham jik phantok chot nok skap sam jik atna
0: nga ti ta game opportunity ma khatar na gon chin cha jana ngata dak sa job e feel la hala sports kota jer ngata alak sit chiong chen ma naksa ngati ngati in ngati former elchis ngati fela sports kota chos song se diale ganga ta di zeriot ki nga ta sam chi job opportunity bing na danga ta 4% sports kota user khan chi chok shi ya chana do do chok la nga ta athletes a alag side la respect chi mat pehle nga ta ngati category ki mat chan do chok job opportunity rik thop chen chok do min mata danga ta sports council maldan ma din chala do mal dan chin kyunki ngati government iska feel las bene di chi suni ka chana do chok sports council le dan sports council on job opportunity yo chin do nga ti depend cha chin ki ngati ga ga level li dur se sin ab jese re district level chi se era job chi tong zane do yan chen kyunki nga ta dyang national level yo mar go shin national senior national gold medal is mar go shin do men mission championship se yo mar go shin yang ta all india university games ang gold mar go shin ya men nang ta national games ang gold mar go shin ya do men mang ta participation je international level jese recognize na era na dering open international re chin don ta valid yo chamin job fill la se gan valid chin je na era world university games re chi chi jo sabse highest rank in olympic domain manga ta world championship domain ma asian championship dono asian games south asian games da ni mena nga ta valid ho chmen yale chana du chula ta job opportunity yang yong chin di sos game ni wet nga zhe chmen ki sirf only taekwondo bar ki har game yang ina du chuk level achievement na en ta job fill la kafi han ke cha chin
1: ashinas par win listing juk pe ka ngerang rang e thopa danda indo ngerang sa chunga indo ne junu gulla ngerang e chok ne julon ji ka message chuk shi ka zuk shi bolen
0: nga ja zet ki yente ga ga field yang ha ga chuk level mehnat chi benod na हिम्मत हराई मिछा चा कॉन्सिस्टेंट दुखचा और रंगई गाला ता अपने ऊपर जिसोशीन मता रंगई खुदे का या रंगई भगवानी का मते भरोसा जगचा और खूब मेहनत बचा मेहनत ही फल कभी हाँ जाया मिछा दो ना मेहरबानी बसे दाँ दे रिंग हला ता ड्रग्स चाम चिके जोन दो सुख फील्ड चंग मछार गला फील्ड रिचूज बसे रंग आता नामी इज्जत रिबासे या जिसुख चीज सुन यंग आते मेहनत बने यंग आता काफ़ी आगे छाचिन छना हमेशा गला ची शिबा बसंग पहला रिया भाई एक बार लोग से आता नामिर दोंग बोला चिलता चा दो ना मेहरबानी ड्रग्स ये एडिक्ट मग्यूर बा रियाला फनकार एक बास रियाला चीज रिबा से मती यूल पो दुन लख्यों चा
1: मल्दे मोले शनाज परवीन ले गेरंग स्टेट अवार्ड जुक्स तन ओक तने गेरंग आता इंटरनेशनल एथलीट जुक्स तन ओक टाइकोंडो एथलीट टोंग लचु दिरिंग गेरंग जुनू ने डिग्री में नंगा ले लुंटिन खा जुनू ने डिग्री में नंगा स्क्यू दा जाते गेरंग रंग ए सालियांग से थोंगम स नंग यंपोंग यंपो स्टिंग जुक पे गा गेरंग जुनू गुन ला तने खदालम स्तन मल्दे मोजिक साला जास गेरंग थुक जे छे
0: हजले
2: Daksa ngijarangune tiwatilane digrimbo santin pin inna botangyapu diri ngaje junukune digrimbo ton sanmodle jule

0: Dakhsang e jirang e stanzin lame salkani lurik sanazats. Nga je akashwani lene juin jiktang in. Chane chucho drigyatang skarma jipchu janga charuk. Kasata akashwani dili ne samachar sandhya. News at 9 yang testing ne urdina nasul sanazat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी।

0: है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश

0: मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर

0: ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद की फालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ की क़्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद की फालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मंसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत BSF और SSB करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वज़ा करने के ज़िमन में मरबूत करेगा।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और एक स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम

0: निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरांदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाज़त नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज़ रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज़ एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज़ किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदामात उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज़,